0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. The Rajya Sabha also passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Secretary, Department of Personnel and Training, Rachna Shah, will inaugurate the meeting. The event is expected to witness participation from BRICS member countries, along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. The Parliamentary Standing Committee

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अकाउंटरांखौ माने क्रोर हाजार सप्तक बुङा थांखारांखौ डिपोजिट खाहा अनि या स्किमखौ आबाचिङानि गोथामगोपा एनिभार्सारियाव बोलसि हाजालगनि चिस्नि नि अगस्ट खलरक्षेत थारिखौ आसंनि प्राइम मिनिस्टार फाराकाहा।

यान आकाशवाणी थुरा दाउन समय स्निखला चिबाजियों हाना सिमांग बॉलीवुड मेलोडी प्रोग्राम मो हिंदी फिल्म नि दिंथांग दिंथांग गी ट्रांगखौ खोनासंना मोनगोन स्खांग पाउन सिमांग बेटा वि फिल्म नि गीतखौ खोनासंना मोनगोन वान कविता कृष्णमूर्ति नि रंगपा गीतमा रुगितारा डोन्ट टेक अ पंगा या गीतखौ सिमांग दाउ खोनासंना मोनगोन

0: Nasimang Bollywood Melody program ko watani samoyo zun film ni git ko knasona naha tao pringni chatpa ji dilio ni ko watagpa hindi ko borang pringni chat chibunga o pringni english ko borang chat khola chiyo shilongoni ko watagpa salguru salara madokni english ko borang ko jol jol knasona man gen yan akaswani tura
1: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूं। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान यह बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कचार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वीर शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट, डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रही हैं, इसीलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। वहीं किदांबी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये है विविध भारती। आज की फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं

0: इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

सन 1929 के अगस्त महीने की चौथी तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

0: बंसुरी बजा।
1: किशोर दा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, नौ दो ग्यारह और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया करते थे।

0: एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में

फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम है, दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हर फन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
2: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोर दा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को से इससे माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही में प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है कि पुलिसकर्मियों पर हमले किए गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन संसद भवन में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी, उसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स और पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान में परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करने को दूसरा चरण बताया। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उन्नति हुडा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही है, इसलिए तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी महिला एकल वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली भारतीय खिलाड़ी होंगी। किदाम्बी श्रीकांत जुलाई में कनाडा ओपन में पहले दौर में हार के बाद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, is underway at the Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and other leaders are attending the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, are also attending the alliance meeting. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee, Nishikant Dubey, criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him.
1: ये माफीनामा जकरबर्ग की तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस लेना चाहिए।
2: The second meeting of the BRICS Anti-Corruption Working Group and the BRICS Expert Network on Asset Recovery will begin in Hyderabad, Telangana today. The two-day meeting is being organized in line with the theme of India's BRICS presidency, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The event is expected to witness participation from BRICS member countries, along with senior policymakers, experts, practitioners and representatives of anti-corruption and law enforcement agencies. India and Uzbekistan have agreed to expand their strategic partnership by strengthening cooperation in critical minerals, mining, trade, energy infrastructure, defence and education during high-level talks held in New Delhi yesterday. The discussions took place during the four-day official visit of Uzbekistan's Foreign Minister Baktiyor Saidov, who met External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. Indian Railways recorded growth of 9% in freight loading in July this year as compared to the corresponding month of the previous year. It loaded 141.3 million tons of freight during July 2026 compared to 129.7 million tons in July last year. The performance reflects sustained demand across core sectors of the economy and continued efforts to improve freight logistics and operational efficiency. Ministry of Road Transport has provided a draft notification proposing an amendment to the Central Motor Vehicles Rules 1989 to bring two-wheeled road ambulances for emergency medical care. The ministry underlined that the proposed emergency ambulance service will support faster emergency response and improve access to emergency medical care in remote areas. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall in Meghalaya and Arunachal Pradesh today and tomorrow. The weather system is likely to impact several districts of Assam, particularly those bordering the two neighbouring states. The Assam State Disaster Management Authority has urged people in the concerned districts to take all necessary precautions and remain vigilant. U.S. President Donald Trump said Iran has been given a last chance to reach an agreement with Washington, claiming that a planned military strike was paused after Iran and several Gulf countries urged diplomacy. Trump also said discussions were underway to reopen the Strait of Hormuz completely, possibly by tomorrow. He described this as the first phase, with the second phase focusing on the denuclearization of Iran. However, Iran's foreign ministry spokesperson Ismail Baghai denied reports of direct or indirect negotiations with the US, saying Tehran was not holding talks with Washington. India's badminton stars will begin their campaign today at the Korea Masters 2026, a BWF Super 300 tournament beginning today at the Asan Yi Sunsin Gymnasium in Asan, South Korea. The tournament will run until 9th of this month. And that is the end of this news bulletin.
3: yana khashwani churan asmang deluni hindi aro english khobaram ko khna swaha somai de oprungni chkhungbaji mi chkhung aha aro yosmayo asmangna chasongatalni achkitrong ho gamatani somayo hetonat moment aro latinson moment ni gitrong khona asmangna gamatangin skhangbona asmangna hetonat moment ni gitrong ho gamatangia gitrong araung a matni nang chithiko aro ribabu ang sambawna

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Yana Kashwani Chura, Dona Smangna, letting son momani gitronko got matangskaya, gitrong aro wa, mangen basak salo, aro walni jumango.

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है, ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आंख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियां रहती है, पैदाइशी बीमारियां रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फोन करके पूछा भी था
0: जी,
1: इसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियां सूख जाती है।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफी रेयर डिजीज है। लेकिन एक चीज हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत जरूरी आजकल के जमाने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज का।
0: जी, जी।
1: एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है तो ऑब्वियसली उतने ज्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है। सरल मैं आपको बता देता हूं, आंखों में डायबिटीज में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं, जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग

0: सिर्फ शुगर पे चलता है
1: जी।
0: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है, जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है, तो हम कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वहां पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई, ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला जाती है। तो जिनको डायबिटीज है, जेनेटिकली हो या किसी और चीज की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है, ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है। उनको ये समझना जरूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है, और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है, जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया
1: जी,
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी, अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है
1: जी।
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी या पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है, तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में
1: जी।
0: अच्छा, पेशाब से निकल रहा है, अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं, नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है
1: जी जी।
0: ठीक है, इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है
1: जी जी।
0: ओके, आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है
1: जी,
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का, अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज, सभी के घर में लीकेज है
1: जी,
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है
1: जी जी।
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा, डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया वो इंट्रासेलुलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है, ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा, आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का, ब्लड निकल आता है
1: जी।
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसकी वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहां पे लाइट जाके लगता है और जहां से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खुश अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहां कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियां आए या खून आए और सूजन आए तो आंख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी
1: बिल्कुल,
0: और ज्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीजें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है, पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 साढ़े 300 चल रहा है, तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है डायबिटिक्स को। शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर
1: जी।
0: डायबिटीज की दो ही चीजें, या तो आपके साथ ऊपर जाती है, आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है
1: जी।
0: डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये शरीर की कमजोरियां हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो, डोलो लो, एंटीबायोटिक लो, चले जाने वाली है।
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है
1: जी।
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली,
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती
1: जी।
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाई यार, ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें है ना,
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर,
1: बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप,
0: बहुत जरूरी है,
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सके और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफी टाइम, अगर आंख के जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आंखों को बहुत ही बचाया गया है। देयर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहां पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीजें जो है, हाँ, एक और चीज जो लोगों को दे, काफी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आंख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है
0: जी,
1: थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी, जी।
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आंख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीजें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफी लोग कहते हैं कि हमको आंख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आंख का हिस्सा नहीं, वो आंखें वहां पे चिपका हुआ है। तो जहां पे वो चिपका है, काफी टाइम वहां से वो सटक भी सकता है। इसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है?
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है एक, जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्यूला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्यूला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्यूला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा।
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
0: जी जी।
1: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
1: लक्षण कम दिखाई देता है।
0: अच्छा,
1: और कोई नहीं।
0: जी,
1: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
0: जी जी,
1: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो स्कैन करने को, बिकॉज स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ CT स्कैन ऑफ द रेटिना।
0: जी,
1: तो हमको बराबर वो स्लाइसिस, उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन

0: देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटाना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी, अनफॉर्चुनेटली। ड्रॉप्स हम लोग देते हैं, लेकिन इंजेक्शन जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है,
1: जी जी
0: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है। लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा है एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं। बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है,
1: जी जी
0: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है। लेकिन फिर हम कुछ शरीर में,
1: उसमें हो नहीं
0: देखिए
1: सकते।
0: लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आंख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं।
1: जी जी जी
0: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में, सभी चीजों में, आप भी
1: बिल्कुल
0: जानते हैं, वेदर
1: बिल्कुल
0: मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है।
1: ये अपने आप में एक चमत्कार
0: ये अपने आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप
1: जी
0: भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल लेने क्या हो गया,
1: बिल्कुल
0: उल्टा
1: बिल्कुल।
0: इमेज, यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है।
1: ये भी कमाल की बात है।
0: आप जानते हैं ना, वापस जाइए, वापस 8th 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
1: यस यस यस,
0: वर्चुअल इमेज है।
1: हाँ,
0: अरे वर्चुअल कैसे हो
1: जो
0: गया?
1: हमारी आंखों में,
0: अब हम
1: हो।
0: एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं? अच्छा, वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार? ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं कर सका बचपन से।
1: मामला फिलोसफी की तरफ।
0: हाँ, बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
1: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें। ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है?
0: दोबारा कहता हूँ, जरूरत हो तो जरूर डालना,
1: ना हो डॉक्टर दें तब डालना।
0: हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर।
1: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस।
0: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें। जितना सेल्फ देखिए, ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं,
1: जी जी,
0: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू या मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
1: रिप्लेस करें
0: वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती। लेकिन अंत में केमिकल है ना
1: जी,
0: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है।
1: सही कह रहा,
0: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
1: जी,
0: ओके। लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
1: जी,
0: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए।
1: बिल्कुल, ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब, यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
0: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
1: जी।
0: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
1: बहुत जरूरी बात है,
0: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो है वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देते, आंखें आपको जरूर साथ देगी। तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है?
1: बिल्कुल,
0: आप महसूस नहीं करेंगे। टच भी इम्पॉर्टेंट है, फील भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है। तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज प्लीज प्लीज बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है, कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें, किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
1: जी।
0: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
1: क्या
0: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है। कोई शॉर्टकट, वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ।
1: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही बॉटम लाइन है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सर,
0: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। इस बीच राज्यसभा में आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया। आज सुबह नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने उन महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग नहीं लिया जो दोनों सदनों में नागरिकों के हित में सफलतापूर्वक पारित हुए। श्री पात्रा ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन

0: समर्पण कर रहे हैं और कांग्रेस ने उनके समर्थन में एक शब्द भी नहीं कहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। ये बैठक संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। इसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट, नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी बैठक में शामिल थे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के वीडियो को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने बताया कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं, इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी चाहिए।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज तेलंगाना के हैदराबाद में शुरू हो रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इसका उद्घाटन करेंगी। इस बैठक में संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लो झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती पेश करेंगे। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, known as Mangal Milan, was held at the Parliament House today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and other leaders were present at the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. The meeting last took place on the 28th of July. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, also attended the alliance meeting. Lok Sabha is scheduled to take up the Bankers' Books Evidence Bill 2026 today. Finance Minister Nirmala Sitharaman is likely to move the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The Finance Minister is also scheduled to introduce the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 and the Appropriation Bill 2026 in the Lower House today. Meanwhile, Rajya Sabha is scheduled to take up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 today. Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. BJP today accused the Congress and other opposition of

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: Yana Kashwani Churad on Smangna Walsing Marakni Gitronko Gamatang Skainga Gitron Aronga Sopasa Aro Bavani Jiketal.

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते।

0: कि जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए, हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। महिला डबल्स में प्रिया कोनजेंगबाम और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Yana Kashwani Churan, Asimang Deluni, Nikoburko Knaswaha, Somoid Osalni, Chinibazimi Pongaha, Aria Somoid Osalni Dunkwink Program Ranko, Aratamni Program Ranko, Somera Maksa Susu Yatanga, Chiginis Kungo, Intradanush Bagapan at Dokniki Drunko Matani Somoyo, Sasunga Cham Nepaliki Drunko Matangin, Chiginikola Chio Deluni with Party Program, SMSK Bahane VVSK Tarani, Chiginis Otomo with Party Charuka, Sabajo with Party Hit Super Hit, Sakola Chio with Party Mancha Higit, Gani Bajo Salni English Kobor, Gani Chibungo Hindi Kobor, Gani Kola Chio Vid Party Program, Gatam Bajo Hindi Kobor, Bunkame Gatam Bunga Bajuni, Gatam Chikunan at Simang Deluni English Kobor Kokunasogen. Yerangan Dal Salni Dunkinba Program Ronga, Dozozo Atamni Program Ronko, Somera Maksa Sulsul Yatanga, Atamni Program Ronko, Atamni Bunga Baji means Pachetoni Knasotagen, Dok Bajo Yatani Somoi, Dok Bungo Shilongoni at Chikobor, Dok Chibungo Salindro Marak Arundoli Isonar Matelani Gitronko Gamatangen, Dok Kolachio, Radio Serial Program Kogamatani Somayo, Jeron Jimo Munitarigpa, The Key Arubandini Golpo, Bakaniko Knasogen, Snibajo Toki House Program Ninungo, Sabir Ehmatni Segment, Dungtang Tang Hindi Film Gitronko Gamatangen, Snikolachio, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Nitarigaman Program, Kisan Bani Bakaniko Knasogen, Chetbajo Delioni Hindi Kobor, Chetbungo English Kobor, Chechkungo Western Music Program, Chechibungo O Delioni Today in Parliament, Chet Kolachio Katsusani Kobor, Chet Superbungo Hindi Kobor, Skubajio English Kobor, Skuchibungo Spotlight Program, Skukolachio Vid Party Program, Bunkami, Tkungbajuni, Chisabajuna, Raja Sapa or Lok Sapa Sangan Nagan Sakani Recording Cook Nasogin, Yerangan Ganikpa Transmission at Harry Sogman Program Ranga, Dadoksani Zamanon at Simang Mangaban Program Cook Nasogin, Yan Akashwani Tura.
3: Oi ruga maine sa narwa dut khunta ki niskhaiya
4: plus f chin ko ninga chimbai
3: ye plus f ni gmun on tisa thangat na man genma
4: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kpa mangrakat kpa aro chuong pa vitamin rang dongja on mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin gnang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uya
5: Oi singbo na song dia ni jabo rang ko rang na gwali nga khon
6: gwal ja babi andi ba chinga de ang na manjawa ha haja gni khok tok du sini jabo rang ko galani niyam mode jabo rang ko dung thang chumong jode upor ange gal na unjai ha
5: ya nong chong mata dauni ke tal ba jabul galani niyam mode sonang ba ar sonang gi jag ba jabo rang ko apsan chumong gal dumani ko sorkari champinga ha uni gman jabo rang ko mungri da ke shwali sa galana ngen skhang ba sonang ba jabo rang jehai gal gman mi su sam jakrang aro bithe rang ni bigal rang gni ge ba jaka butai na man ge ba sonang gi jabo su rang jehai plastic rang aro chamsu rang gtham ge ba rongthal anthal atani yo jakal ge ba bustu rang bri ge ba battery tube light aro glass rang
7: ah yarang gmu khona ga takaw de
6: unode singa khachan jabo rang ko galna rang ayen
5: daloni nanthang thang ni takna na gni ko ra simang takbo anthang thang ni sara nokra rang ko rongthal rakibo aro an sing baljoki dongbo yako jinmani nam gni na director urban affairs department government of meghalaya
2: Yana Kashwani Tura, so made us only Kemakabu.

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं,
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नव में विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

किशोर कुमार के उदास नगमे अलग अलग संगीतकारों के साथ। फिल्म का नाम निशान, राजेश रोशन का संगीत।

यादें। कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।

आइए सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। किशोर कुमार का जन्मदिन फिल्म संगीत के चाहने वालों के लिए एक बहुत ही अनमोल दिन होता है, और आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का मिजाज हमने बिल्कुल

0: अलग रखा है, इसीलिए आज की इबारत बिल्कुल अलग तरह की है। ये इबारत, अरे सुनो सुनो गुणी जनो, मेरा मतलब है सुनिए सुनिए, जरा सी हुई चूक और आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, अपनी तो बच गई बीन, जाना था जापान पहुंच गए चीन। अरे भाई किसी ने कहा था निकलो घर से दुनिया की रौनक देखो, तो बस निकल पड़े टिम्बकटू काठमांडू, रह गए हक्का बक्का, देश छुड़ाए भेष छुड़ाए, क्या क्या ना करे ये प्रीत रे, कहीं मिला निराला सुरमा, कहीं प्यारी बिंदु और कहीं भीगी भागी लड़की, पर फिर याद आई गुरुजी की सीख, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। तो हमने दिया चकमा ईना मीना डीका को, भले हमें गाना ना आया बचाना ना आया, पर एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, तो बढ़ के बोल बेटा बम बम, 1 बजे मिलेंगे हम। यह है आज की इबारत और लीजिए 1 बजे मिल भी गए हम, लेकर आए हैं किशोर कुमार की फुल मस्ती।
1: सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जरनल सिंह
0: भाई, सबको सुनने की बात कह रहे हैं किशोर कुमार इस गाने में। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो टुकड़ा हमने बजाया ये किस फिल्म के किस गाने का टुकड़ा था? और अब किशोर की दूसरी मस्ती, ये गाना बहुत कम लोगों ने सुना है।

0: gele gele gele gele gele gele gele gele gele gele bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk bam bam ma kuk zil haku babu jan haku babu jan haku babu zil haku babu ram ram siya ram salam walaikum pyar kar chup chup chup priya chup chup than than kut kut kut kut kut kut than than kut kut how do you do bam chik chik cham chik chik bam chik chik cham chik chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik bam chik bub chik pad ke baul beta bam bam
1: भाई बढ़ के बोल बेटा बम बम वाला ये गाना, ये सोचकर हैरत होती है कि इसमें गीतकार का कितना योगदान है और किशोर का कितना योगदान।
0: बाबा लोग सुनो, काका लोग सुनो, दादा लोग सुनो, जल्दी जल्दी देखिए कुड़िये, ये पुत्र देख भाई इधरा खाली है पिंजरा, नहीं देख भाई इधरा, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
1: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
0: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का, बोलो मसाल जवानी दीवानी का।
1: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं, इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
2: गौरी जरा बती या सुनो जी मोरी मोरी।
1: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा तीन गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
2: चोरी चोरी चोरी।
1: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के तीन फेवरेट्स कौन से हैं।
2: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी, हे हे हे हे।

0: सब चली ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गे ली जरा टिम्बकटू।
1: काठमांडू काठमांडू गले वो
0: मैं हूँ लोहा चुंबक तू,
1: कैसे भला बच बच के रहू
0: गे गे गे गे ली जरा।

0: नहीं हूँ दीवाना, पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा।
1: मैं हुलोहा
0: गे गे गे गे ली जा रहा।

0: क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गेगे गेगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है, उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद है, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरूह सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आंखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अभी गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा?
1: सुनो सुनो

धर्मेंद्र जय धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र जगत नारायण के छोड़ के संतो नगद

0: पीछे पड़ गया इनकम टैक्स हम
1: जय गोविंद हम जय गोपाल।
0: अरे बम बम नाचे किशोर कुमार हम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को बम बम को।
2: जरा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: आया, किसी से लंच का वादा, खिसक के पहुंची रेस्टोरां, जान में आई जो
1: हाय हीरो हाय हीरो हाय हीरो
2: हाय बेबी हाय बेबी हाय बेबी
1: हाय हाय हाय
2: हनी, मैं तो बोर हो गया।

0: कप
1: एंड सदम फॉर दिस कंट्री सदम।
0: कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लैंड।

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुर्नार, पांच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते कि आप अपनी यूडिलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग। यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का।

0: ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
1: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
0: चाहे

को समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको बूम धाम बड़ा बड़ा बूम आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का पक्का दुनिया पागल।

चूमे। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का, हक्का बक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। बच मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो सोनिया मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता, कहता हूँ पते की सुन, वो भी काटे मैं भी काटूं, यहाँ सबको है अपनी धुन। अरे भागो बम्बई से कलकत्ता, चलते जाना देखे धक्का, आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप, मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी भागी सी, अजनबी, तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार की गायनक में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज के जादू से हम सबके दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से जरूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाए। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोरदा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

देखी दिल्ली की एक लड़की जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की।

0: हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
1: चाय पिलाऊं के ठंडा मंगाऊं? अरे चाय पिलाऊं के ठंडा मंगाऊं?

0: यार।
1: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
2: कहने लगा
3: ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था भक्सर भारी, उसका भाई था

कहां से पहुंचे और कहां चले गए हुनू लुलू, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना परिवार, फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मजेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए, जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, यह उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें से कुछ पहली बार सुने हैं। ठीक है भाई, अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय लटकट रंगीले सावरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सावरिया।

0: तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल में जैसे कटरिया, ओ सवरिया।

0: गुजरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंग का गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहां चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहां पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहां पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब 2 गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी। कितने बार आपने देखी है जरा बताइएगा तो हम ये अंदाजा लगा पाए कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात यह है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाये हुए हैं। और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बता।

0: अरे भाई अरे भाई
1: अरे भाई निकल के आ घर से आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से देख ले फिर से।

0: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
1: फूंक फूंक कर चूल्हा, अखियन का भयो सत्यानाश, हल्दी देवी बहु है अपनी, श्रीमती मिर्ची अपनी सास। हाँ बोल मेरे दुखिया मन, कब तक ये चूल्हा ये चौका ये झाड़ू ये बर्तन ये आटा बटाटा ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरी की, पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत यो दास। एक

चार दिन होंगे गरीबी के, जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी, गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी, बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, बड़ी दुनिया जो देखेगी है बड़ी दुनिया।

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहां मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखा नहीं इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में है और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मजा आ गया। बल्कि एक और मजेदार किस्सा ये हुआ के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है उनको बड़ा मजा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए। एक श्रोता लिखती हैं कि भाई जरूरत है एक श्रीमती की, ये गाना नहीं बजाया गया। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं प्रिय प्राणेश्वरी को मिस कर रही हूं, इसके अलावा झुमरू गाना नहीं बजाया गया। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है, पर एक श्रोता है जिन्होंने कहा कि क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, ये गाना मुसाफिर फिल्म के गाने की पंक्तियां हैं। मुन्ना बड़ा प्यारा ये गाना है जिसमें इतनी सुंदर पंक्तियां आती हैं। शैलेंद्र लिखते हैं कि एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूकती है चूल्हा, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला, अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति, शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये जरूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूंगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नजर आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

दुश्मन जिसे सताए इसको लगा के जाए, जाके नजर मिलाए, धोखा कभी न खाए। बूढ़ा हो या हो बच्चा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद पर टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सदन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। अपनी तरफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं, और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता

0: संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
1: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
2: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
3: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
4: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके पास करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत

0: केवल एक सदस्य है। ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है, क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20

0: समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाघ जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है। उधर पहले स्थगन के बाद राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
1: राज्यसभा ने जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना उसकी घटना के एक वर्ष से अधिक लेकिन दो वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल जिला मैजिस्ट्रेट, उपमंडल मैजिस्ट्रेट या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट की स्वीकृति से ही किया जा सकेगा। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया है कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है, जहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता बढ़ गई है। होर्मुस जलडमरू मध्य के पास एक वाणिज्यिक पोत पर हुए ताजा हमले और सऊदी अरब के टैंकरों को लाल सागर से दूर ले जाने की घटना ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बढ़ते खतरों को उजागर किया है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुस जलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा है कि उनका देश अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा लेकिन युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। ओडिशा में महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम होने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में आज हल्की वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है और खैर सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था, सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं
1: जी।
0: तो और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे हम किस दुनिया में फंस गए या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
1: बिल्कुल।
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी हो, चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या कुछ तरीके की चीजें होती हैं,
0: बिल्कुल सही,
1: ऐसे हादसे हो जाते हैं
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नजर में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमजोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति ऐसी बना देंगे, लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो जरूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अभी तो ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनकी विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, एक हमारे साथी जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान भाई। सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं। और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए। और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है, जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है। चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं। इस कार्यक्रम में
1: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो। सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो, पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन

0: उनकी बेटी 1 साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं। और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ, तब

0: की कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
1: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
0: जी बिल्कुल, और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले, जिनमें प्रमुख है टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर, और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
1: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था। और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन इन सब के बाद भी सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
0: बिल्कुल, अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
1: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
2: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: तो आरती तुम चौंक गई ना।
0: हाँ। क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
1: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
0: जी।

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन के जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखे हैं उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहां पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापिस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांध था, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप हुआ करता था। सभी काम हाथ से मतलब औजारों से किया जाते थे। शीशम की लकड़ी को काटते वक्त जो भूसा यानी पाउडर निकलता था, पाउडर निकलता था वो चाय की पत्ती जैसा हुबहू लगता था। हम बच्चे उसे इकट्ठा करके न्यूज़पेपर काटकर भूसे से भरा मस्त पैकिंग जैसे दुकानदार करता है वैसा बना लेते थे। शाम ढलने या अंधेरा होने के समय घर नजदीक के रास्ते पर डाल दिया करते थे। उस रास्ते से जो लोग जाते थे उनकी नजर उस पर पड़ती तो वो चुपके से अपनी थैली में डालकर चल देते थे। तब उन्हें देखकर हमारी खुशी और हंसी का ठिकाना नहीं रहता था। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों के बाद हमारी शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई। उन्होंने हम सभी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई, पहले तो माता पिता धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल आराम से
0: और बच्चे भी खा लिया करते थे। हमने भी बहुत धुलाई हुई है हमारी भी। लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे। कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा तुम उनकी चरपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं डर जाते हैं ना। हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि हल्की फुल्की बातें बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वो ये दोनों बातें बता रही है। उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे, है ना, सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे, एक रुपए का 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी कई बार स्कूल में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: तो ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं।
0: हाँ शरारतें भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
0: हैं, तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना,
1: हमारे यही करते हैं ना कि सबको मत लेके जाओ, एक सिर्फ
0: लेके जाओ। और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है आरती
1: कि हमें नहीं लेके
0: हमें नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि बच्चे क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है। और वही श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे।

0: पकड़े जाने पर डांट खाते थे, वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकल कर घुमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी कभी डांट भी पड़ी होगी, कभी कभी मार भी
0: पड़ी होगी।
1: अच्छा मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने,
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं। और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखती है कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है, आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
3: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी न जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौक के जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग गया हो। तो ये बचपन की यादें इन्होंने साझा की है।
4: बिल्कुल, अब हम बचपन की यादों से बाहर निकले, थोड़ा
3: निकलना पड़ेगा और हमें मुहावरों की दुनिया में जाना पड़ेगा।
4: बिल्कुल, क्योंकि हमने आज का मुहावरा रखा था 1 से 21 होना। अब 1 से 11 होना तो हमने बहुत सुना है।
3: बिल्कुल।
4: अब हम लेकर आए 1 से 21 होना।
3: हाँ,
4: तो यानी कि हमने उन्नति करी ना।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
4: ये उन्नति तो है। 1 से 21 होना यानी कि उन्नति करना।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है?
4: हमारे श्रोता भी बहुत कुछ लिख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि 1 से 21 होना अर्थ है बढ़ना, उन्नति करना या फलना फूलना, बहुत अधिक प्रगति करना या संख्या लाभ में वृद्धि करना। आम दैनिक जीवन में इसका उपयोग इसे आशीर्वाद के रूप में, तरक्की के रूप में करते हैं। और जैसे कि तुम पर कृपा बनी रहे, 1 से 21 हो, जब से उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया है 1 से 21 हो गया है उनका व्यापार, तो यानी कि उन्नति करते जाने को कहते हैं 1 से 21 हो जाना।
3: हाँ, बहुत अच्छा एक मुहावरा आप लेकर आई हमारे श्रोताओं के लिए। अक्सर अक्सर क्या होता है, एक और एक 11 का तो हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन एक 21 होने वाली जो बात है, एक से 21 होना वाला, ये जो बहुत कम प्रयोग में आता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हर मुहावरे का उपयोग, इस खास मुहावरे का उपयोग तब किया जाता है जब दो चीजों में मुकाबला हो और एक चीज दूसरी चीज से हर महीने में श्रेष्ठ हो, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस चीज को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। और हम सबकी जिंदगी में कई बार होता है, लेकिन मेरा कहना है कि इस मुहावरे का उपयोग हमें करना चाहिए जब एक दूसरे के बीच कभी कोई तुलना नहीं करनी हो, बल्कि उससे बढ़कर ही कहना हो, वही कि जब उन्नति करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है।
4: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि एक से 21 होना, भाई ये भी कोई मुहावरा है? हाँ। और अगर है भी तो पहली बार सुन रहे हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ एक और एक 11 या फिर 9-2-11 जैसे मुहावरे चलते हैं यहाँ। और एक और एक 11 का तात्पर्य संघ शक्ति से ही है, क्योंकि मतलब कि शक्ति में, यानी कि एक और एक मिलता है तो 11 बन जाते हैं, तो वो शक्ति बन जाती है। तो एक से 21 होना भी आप नया जो मुहावरा है आप सुन लीजिए, नया नहीं है ये, पुराना ही मुहावरा है, लेकिन हमने सुना कम है।

0: ये प्रयोग कम होता है,
1: कम प्रयोग में आता है, इसलिए हमें थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भी एक और एक ग्यारह होना तो हमने सुना है, या हम नौ दो ग्यारह भी जानते हैं, लेकिन ये इक्कीस होना क्या है, एक से इक्कीस होना,
0: जैसे
1: तो मतलब
0: एक है, एक से सीधे हम उछल के इक्कीस से पहुंच गए, यानी कि उन्नति कर ली हमने।
1: बिल्कुल सही बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि एक का इक्कीस हो जाना यानी संख्या स्थिति में बड़ा फायदा होना, उन्नति करना, फलना फूलना या किसी स्थिति में अचानक बहुत सुधार होना, व्यापार में सही फैसला लेने से मोहन का कारोबार कुछ ही दिनों में एक से इक्कीस हो गया। इन्होंने उसका प्रयोग करके भी बता दिया है, जैसे हम अपनी कॉपी में लिखा करते थे वैसे ही इन्होंने भी बताया है कि ये ऐसे प्रयोग में आता है मुहावरा।
0: एक और साथी जो इसी तरह से बात बता रहे हैं कि इसका मतलब है आशीर्वाद रूप से कहा जाता है इसे, और आप अपने जीवन में खूब प्रगति करें, खूब आगे बढ़ें, और एक एक मतलब करके आप 21 गुना ज्यादा प्रगति करें, यानी कि और ज्यादा बढ़ोतरी करें।
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि मुहावरा एक से 21 होना का अर्थ है बहुत अधिक लाभ होना, तरक्की करना या गिनती में बढ़ जाना। ये मुहावरा गणितीय और व्यवहारिक संख्या बल पर आधारित है, जहां संख्या एक अकेलेपन और कमजोरी को दर्शाती है, वहीं 21 एक बड़ी और शुभ संख्या मानी जाती है। जब कोई व्यक्ति या संस्था अपनी स्थिति को बहुत कम समय में कई गुना बेहतर कर लेता है तो उसे एक से 21 होना कहा जाता है।
0: जी बिल्कुल। और हम और भी हमारे जो साथी हैं वो भी इसी तरीके की बात कह रहे हैं कि उन्नति करना इसका मतलब है आशीर्वाद देने में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि एक से 21 हो जाए, यानी कि आप अपने जीवन में उन्नति करते रहें। इसी तरीके की बातें लिखी है हमारे बाकी साथियों ने भी। अब एक गीत सुने।
1: हाँ, गीत सुनेंगे, लेकिन हमारे श्रोता जो कहना चाह रहे हैं वो कह देते हैं और कार्यक्रम का आखिरी गीत होगा ये आरती।
0: जी, बात तो सही कही आपने।
1: तो देखिए, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब एक ही चीज दूसरी चीज से हर महीने में, हर मायने में, महीना लिख रखा है हमारे श्रोताओं ने, हर मायने में श्रेष्ठ हो, तब इस बात को दर्शाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एक से 21 होना। और वहीं हमारे श्रोता जिन्होंने अभी हमारा पिछला सेगमेंट था ना, हल्की फुल्की बातें में बचपन की यादगार जो शरारत, उसमें भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी शरारतें अभी तक हमें लिख भेज रहे हैं। वो लिखते हैं, पढ़ दो तुम कहो तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो लिखते हैं कि हमारी बेटी का भी यही हाल था, एक दिन हमने बहुत कुछ बनाया, ननंद आने वाली थी और सबको समझा दिया कि ये सब एकदम सर्व करेंगे तभी पता चलेगा, पर बेटी कहां मानने वाली थी, आते ही बता दिया। और एक बार हम दूध रखकर भूल गए और बर्तन भी थोड़ा जल गया, तो हमने बच्चों से कहा कि पापा को आते ही ऐसी बात नहीं बताएंगे, पर क्या उसने आते ही बताया पापा, ऐसा हो गया। और तो और मम्मी को भी ये बताने के लिए उन्होंने मन बना लिया। तो इस तरह की शरारतें हम बचपन में,
0: ये अक्सर ऐसा होता है जब हम बच्चों को कोई बात मना करते हैं ना कि ये बात आपको नहीं कहनी है, तब तो वो जरूर उस बात को कहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी शैतानियां तो बहुत है, लेकिन बात है गर्मी की छुट्टियों की, जब हमारे घर के बड़े आराम किया करते थे और हम सब दोस्त पास के एक झरने में नहाने भाग जाते थे, और वहां नहाने के लिए सब अपने कपड़े उतारते, पानी में कूदते, तभी मैं और मेरा दोस्त उनके कपड़े उठा के भाग जाते थे और आधा किलोमीटर उनको दौड़ा दौड़ा के ही कपड़े दिया करते थे।
0: एक छोटा सा एक हमें संदेश भेजा तो वो भी हम पढ़ देते हैं। एक हमारे साथी जो कहते हैं कि जब मैं छोटा सा था, 6-7 साल का रहा होऊंगा, तो उस समय मैं स्कूल बंक करके, स्कूल को अपने पीरियड छोड़ करके, मैं अपने नेबर के हाउस में, अपने पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाता था, वहां पे मतलब बैठा रहता था, वहां नहीं जाता था, स्कूल नहीं जाता था। तो इस तरह की शरारतें भी हैं।
1: बाकी बहुत आज मन खुश,
0: और आज वो एंजॉय कर रहे हैं अपना रिटायरमेंट, सोचिए।
1: अच्छा, आज वो अपना मतलब उनका रिटायरमेंट हो गया है और वो बचपन की यादों को भी ताजा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बहुत खूब। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आरती, सुन लेते हैं गीत।
0: हाँ,

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आती अभी देखिए, हमारे एक श्रोता लिखती है, हमारी सखी, कि आज विषयों पर बढ़िया जानकारियां, मधुर गीतों के साथ, बढ़िया प्रस्तुति के साथ सखी सहेली कार्यक्रम आपने पेश किया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हैं।
4: बिल्कुल। और एक हम अपने साथी का छोटा सा भर देते हैं, उन्होंने अपनी शरारत जो लिखी है, लिखती है कि बचपन की शरारतें कितनी मासूम होती है, इसका सबसे प्यारा किस्सा हमारी बेटी का है। जब वो स्कूल जाती थी तो कई बार बस वाले भैया से कह देती, हमारी छोटी बहन आज स्कूल नहीं जा रही है, आप चलिए। असल में स्कूल बस हमारे घर से थोड़ी दूर एक मोड़ पर आती, हमारी बड़ी बेटी पहले ही वहां पहुंच जाती और हम छोटी बेटी को पीछे पीछे लेकर आते। उसकी ये छोटी सी शरारत में बार बार हंसा देती थी और आज भी जब वो याद आती है तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है।
3: बिल्कुल सही कहा आरती, बचपन की जो बातें हैं वो कभी भी हमें हंसा देती हैं और गुदगुदा देती हैं। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम और हंसे और गुदगुदाएं। तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
4: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सेलुलाइट के सितारे इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशिका तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ तनिष्ठा चटर्जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: जी थैंक यू।
1: तनिष्ठा, कैसा लग रहा है विविध भारती में आके और ऑल इंडिया रेडियो से आपका किस तरह का कनेक्शन है यादों का, ये भी बताइए सबसे पहले। तो
2: अभी तो मैं फिलहाल जो रीसेंट कनेक्शन मेरा बना कुछ घंटों पहले या कुछ एक्चुअली मिनट्स पहले, उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि यूनुस जी, आपने जो यहाँ के लाइब्रेरी का टूर दिया, जहाँ जो एलपीज और सीडीज जो आप स्टोर करते हैं, मतलब वो देख के तो मैं हैरान हो गई हूँ और बहुत प्लेजेंटली सरप्राइज्ड हूँ कि इस खूबसूरत ढंग से इनको आर्काइवल जो चीजें हैं आप स्टोर करके रखते हैं। मुझे अगर पहले पता होता तो मेरी एक बेटी है जो 10 साल की है, उसने जिंदगी में कभी ये सब चीजें देखी नहीं है, तो मैं लेकर आती और मैं दोबारा यहां आऊंगी उसको लेकर।
1: कितनी मजेदार बात है कि जब आप देख रही थी तो बड़ी पुरानी पुरानी फिल्में नजर आई, जैसे कि आपने चोरी चोरी का रिकॉर्ड दिखा।
2: हाँ जी,
1: है ना। फिर 78 आरपीएम का एक रिकॉर्ड दिखा, फिल्म थी यास्मीन।
2: वाह,
1: 1955।
2: मुझे पता भी नहीं है, वो तो मैंने ब्लाइंड निकाल दिया और आप मतलब आप एनसाइक्लोपीडिया है, इसलिए आपने मुझे समझाया कि ये यास्मीन है, तो इसका जो ये गाना है हम सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, आज के इस प्रोग्राम में वो गाना भी हम जरूर बजाएंगे, लेकिन पहले अभी जरा यादों की तरफ चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुई थी और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: मैं एक्चुअली पुणे में पैदा हुई थी
1: जी,
2: और मैंने कुछ साल पहले एक मराठी फिल्म की, डॉक्टर रखमाबाई, जो इंडिया की फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर हैं
1: जी,
2: उनकी जीवन पर, और मैंने डॉक्टर रखमाबाई का किरदार निभाया, तो लोगों को ऐसा लगा कि मैं शायद, मतलब है मेरा नाम चैटर्जी लेकिन मैं महाराष्ट्रीयन ही हूँ।
1: वाह वाह वाह,
2: क्योंकि वो मराठी में फिल्म थी और पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला। लेकिन मेरी पैदाइश पुणे की हुई, उसके बाद हम लोग बाहर चले गए जब मैं 6-7 महीने की थी।
1: जी जी,
2: हम लोग, मेरे पिताजी जो है उनको सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम मिला, तो हम जापान में थे, केन्या में थे, इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अलग अलग बाहर देशों में, उसके बाद हम दिल्ली आए। और तो मैं अपने आप को दिल्ली वाली मानती हूँ, क्योंकि जो मेजर मेरा जो चंक है ना, जो आपका एजुकेशन है, टीनेज इयर्स है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये सब जो है मैंने दिल्ली में किया,
1: तो दिल्ली जो है वहां दिल बसता है आपका। एक मजेदार बात यह है कि ये जो हमारे बनने के दिन होते हैं, जब टीनेज के बाद इंटरेस्ट शुरू होते हैं और जिंदगी की एक थोड़ी सी राह कहीं दिखती है या ख्वाब बनने शुरू होते हैं, जाहिर है आप दिल्ली में थी और ये बहुत मजेदार जमाना था 80s 90s का। मैं जानना चाहता हूं उन सुहाने दिनों की यादें आपसे।
2: तो ऑब्वियसली दिल्ली मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है, क्योंकि वहां से मुझे हर चीज, जो शिक्षा है वो सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मैंने हफीज अहमद खान साहब से, शांति हिरानंद जी से तालीम ली, उससे पहले बचपन से मम्मी ने मुझे गंधर्व महाविद्यालय मुझे भेजते थे हिंदुस्तानी क्लासिकल का जो बेस है वो सीखने के लिए, और म्यूजिक से जो है इंडियन कल्चर का एक जो वास्ट मतलब समुंदर है, वो जो पोएट्री है उसका पूरा इंट्रोडक्शन मेरे लिए म्यूजिक के साथ शुरू हुआ। और जब मैं कॉलेज में थी, स्कूल में थी, तो उस समय क्या होता था, स्पिक मके करके एक प्रोग्राम होती थी जहां बड़े बड़े आर्टिस्ट, मतलब चाहे वो आप अली अकबर खान साहब को ले लीजिए, अमजद अली खान साहब, जाकिर हुसैन, सब आते थे और फ्री,
1: बिल्कुल
2: फ्री में वो स्टूडेंट्स को मतलब परफॉर्म करते थे और सिखाते भी थे।
1: वो तो मकसद ही है सोसाइटी ऑफ
2: बिल्कुल कि
1: वो युवाओं
2: एजुकेशन एजुकेशन जो है आप उनको कॉनोसियर्स बनाए, हर कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही बन जाए
1: जी.
2: लेकिन श्रोता हो और हमारे कल्चर को वो आगे बढ़ाए. तो उसमें मतलब फैंटास्टिक केलुचरण महापात्रा से लेकर यामिनी कृष्णामूर्ति डांस भी जो है सोनल मानसिंह सबको मैंने लाइव परफॉर्मेंसेस भर भर के देखा है.
1: क्या बात है.
2: वो एजुकेशन जो है मैं अपने बेटी को इस ढंग से नहीं दे पाती हूँ यहाँ पे और मैं वो बहुत मिस करती हूँ. दिल्ली में उस माहौल में मैं पली बड़ी जहाँ मंडी हाउस और जो विंटर्स बिल्कुल विंटर्स में और बाद में वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इंडिया हैबिटेट सेंटर ये सब त्रिवेणी कला संगम सब जगह जो है कुछ ना कुछ होल विंटर चलता रहता था. और हमारे बीच में मतलब मम्मी को कभी कभी ये होता था कि क्योंकि विंटर्स में क्या होता है मार्च में जाके आपके एग्जाम्स होते थे. हम लोग सब सीबीएसई के पढ़े हैं और ये नवंबर दिसंबर जैन लेकिन हमको ये सब कुछ देखना ही है और पढ़ाई की भी तैयारी करनी है. ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था हमेशा.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
2: लेकिन हमने अपने आप को कल्चरली जो है क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज भी सारे हैं तो फिल्मों के रेट्रोस्पेक्टिव्स जब कॉलेज में मैं गई तो वो सब भी शुरू हो गया कि वहां आप जितना फ्रेंच न्यू वेव है इटालियन सिनेमा है जितना डेसिका से लेकर ब्रेसों सब एलन डेलों की फिल्में सब मैंने इस रिपोर्ट या फ्रेंच एम्बेसी या इटालियन एम्बेसी में रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है रशियन सिनेमा का रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है पोलिश सिनेमा मतलब आंद्रे वायदा किश्लोवस्की सब कुछ मतलब कॉलेज तक ना सब देख लिया मैंने. मैं बंबई जब आई मुझे ऐसा लगा कि अब आगे मैं क्या करूं.
1: क्या बात है. बिल्कुल सही है. मैं समझ सकता हूं कि ये जब एक बहुत ही कल्चरल माहौल आपने हाँ. देखा है तो एक दूसरे शहर में जाने का बहुत फर्क पड़ता है. आपने बताया कि बचपन से आपको क्लासिकल म्यूजिक की तरफ जोड़ दिया गया तो क्या घर पर उस तरह का माहौल था घर में भी कोई गाता था.
2: नहीं एक्चुअली मेरे मम्मी और पापा दोनों ही उन्होंने वेस्ट बंगाल 70s में अलग अलग मतलब वो मिले थे दिल्ली में बट इन द 70s वो मूव आउट कर चुके थे वेस्ट बंगाल से. तो मम्मी पढ़ने के लिए गई थी पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ने के लिए दिल्ली गई और पापा इंजीनियरिंग के बाद नौकरी के लिए चले गए वहां. तो मेरे पिताजी वेरी अनलाइक मोस्ट अदर बंगालीज वो बिल्कुल हार्डकोर कॉर्पोरेट गए थे और इंजीनियर और कॉर्पोरेट बस. और क्योंकि मम्मी का डिस्प्लेस्ड था तो वो इवन दो शी लव्ड कल्चर एंड म्यूजिक एंड आर्ट और ये सब लेकिन वो खुद कभी ज्यादा कर नहीं पाई थी तो इसलिए उन्होंने हमको एक्सपोजर दिया. और गाने का ये था कि मैं जब 4-5 साल की थी तब हम लोग नैरोबी में रहते थे और किसी के घर मतलब जहां कोई गा रही थी उनके घर पे वो गाना सुन के मैं गुनगुना रही थी. और उन्होंने मेरी मम्मी को कहा कि अरे इसमें तो बहुत धुन है इसको सिखाओ. तो तब से मम्मी ने सोचा कि चलो इसको गाना सिखाते हैं.
1: क्या बात है क्या बात है. देखिए आपको म्यूजिक की तरफ मोड़ दिया गया ये बहुत ही अच्छी बात है. और अब इस प्रोग्राम को म्यूजिक की तरफ मोड़ा जाए तो मुझे लगता है कि आज पहला गाना जो है वो कौन सा सुनाएंगी आप ये गा के ही बताएं.
2: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएं में उड़ा चला गया. सुनते हैं
1: क्या बात है. ये हम दोनों फिल्म का गाना और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा था और जयदेव की तर्ज थी. सुनते हैं ये गाना
2: जी.

0: बहुत ही मजेदार बातें चल रही हैं। आपने बताया कि पहले तो आपको जो बुनियादी शास्त्रीय संगीत है वो सिखाने के लिए गंधर्व भेजा गया, और उसके बाद आपने अपने गुरु के साथ तालीम ली। वो कैसे दिन थे और कितनी दिलचस्पी बढ़ रही थी म्यूजिक में आपकी?
1: हाँ, म्यूजिक में तो बढ़ ही रही थी। इसके साथ साथ मेरे मतलब हफीज अहमद खान साहब, उन्होंने हिस्ट्री में एमए किया हुआ था, तो वो हमेशा बहुत सारे किस्से भी सुनाते थे।
0: हिस्ट्री में एमए क्लासिकल म्यूजिक सिखाने वाले, वाह
1: या तो वो मतलब क्लासिकल म्यूजिक की हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री, लैंग्वेज का जो कंट्रीब्यूशन है, फिर जो हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो मिश्रण होता है लैंग्वेजेस का, कि ब्रज में शुरू होके उर्दू के कपलेट्स थाई में जाती है, ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर जो चर्चा बातें होती थी, तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। फिर मैं शांति हीरानंद जी के पास सीखने गई ठुमरी दादरा में स्पेशलाइज करने के लिए, और शांति जी बेगम अख्तर की शागिर्द रह चुकी थी। और शांति जी ने एक बार मुझे बहुत कमाल की चीज कही, उस समय मैं मतलब स्कूल और कॉलेज में ही थी, तो गाना मैं बहुत अच्छे से गाती थी और वो मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि भाव क्या है, और वो उस समय नहीं समझ में आता था इतना
0: मजेदार है ये।
1: बहुत साल बाद मुझे एक बात उनकी समझ में आई कि उन्होंने ये कहा कि क्योंकि तब उनकी उम्र हो चुकी थी, जब गाती थी मैं तो तब पिया नहीं था, क्योंकि ठुमरी दादरा में हर मतलब बंदिश में यही बात होती है कि द एकिंग पेन ऑफ सेपरेशन, कि पिया जो है वो छोड़ के चला गया। तो वो कहते थे कि जब पिया था तो गाना मतलब सीख रहे थे, और अब गाना आता है तो पिया के बारे में मतलब क्यों उम्र हो चुकी है।

0: और वो पेन रहा नहीं है तो दोनों साथ में हुआ नहीं कभी. शी यूज टू यू नो सी
1: दैट उस समय.
0: या वी आई नेवर अंडरस्टूड दैट. मच लेटर आई अंडरस्टूड कि भाव जो है वो मतलब कहाँ से आती है. कि आप जिंदगी में कुछ चीजें सहन करते हो, दर्द आता है, तभी आप कुछ क्रिएट कर पाते हो. चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो फिल्म हो, आपका क्रिएशन जो है. कल एक्चुअली मैं कैफी आजमी साहब के एक इवेंट पे गई थी जहां उनके सेंटेनरी पे पोस्टल स्टैम्प रिलीज हुआ और जावेद साहब यही कह रहे थे कि हम ट्रेजेडीज के बारे में बात कर रहे थे. और मैंने कहा सैराट इतनी बड़ी ट्रेजेडी फिल्म है लेकिन फिर भी हिट हुई. एंड ही सेड कि नहीं, ट्रेजेडीज हमेशा होती है हिट, क्योंकि पेन से लोग रिलेट करते हैं ना. एंड वही चीज हम बात करते हैं, जब तक आपको जिंदगी में पेन नहीं मिलेगा आप क्रिएट नहीं कर पाओगे. ये क्रिएशन की ट्रेजेडी है.
1: क्या बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है. मैं वापस दिल्ली वाले दिनों की तरफ जा रहा हूँ. शांति हीरानंद से जब आप सीख रही थी तो वो तो हिंदुस्तानी बंदिशें सीख रही होंगी, तो कोई बंदिश याद है?
0: बिल्कुल. तो मुझे जैसे मांड सिखाती थी तो मुझे
1: वाह,
0: तो मैं एक सावन की ही कोशिश में. हाँ,

0: क्या बात है, मैं तो यही कहूंगा कि सचमुच सावन की बदरिया घिर घिर आए और खूब घिर घिर आए।
1: बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश है।
0: बिल्कुल, यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए।
1: हाँ
0: सुनते हैं।

0: संगीत चल रहा था तो अभिनय की तरफ रुझान कैसे हुआ था?
1: एक्चुअली संगीत के वजह से हुआ
0: जी,
1: क्योंकि स्कूल में फिर कॉलेज में जहां भी हम लोगों के म्यूजिकल प्लेज होते थे वो मुझे इसलिए कास्ट कर लिया जाता था कि मैं गा सकती हूँ।
0: और अलग से गाने की परफॉर्मेंसेस

0: बंगाली जो क्या होता है कि मतलब वो पूरा महीना जो हम लोग रिहर्सल करके फिर दुर्गा पूजा में परफॉर्मेंस। तो मेरा एक्चुअली पहला नाटक जिसमें मैंने मेन रोल मतलब सोलो रोल किया फुल प्ले में, वो दुर्गा पूजा का एक नाटक था, वो बंगाली में था।
1: अरे वाह वाह, तब क्या उम्र रही होगी आपकी?
0: 10 साल।
1: क्या बात है,
0: हाँ,
1: इतना सारा याद
0: म्यूजिक उससे
1: करना।
0: पहले से चल रहा था जिंदगी में, बट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई मतलब हाँ एक्टिंग का इंट्रोडक्शन हुआ।
1: और कब ये लगा कि इसे एक करियर चॉइस के रूप में रखा जा सकता है?
0: ये बाय एक्सीडेंट हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी
1: और आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: जी तो ऐसा कभी नहीं सोचा था कि परफॉर्मिंग आर्ट्स को प्रोफेशन बनाऊंगी, क्योंकि क्या होता है इंडियन मिडिल क्लास होम्स में कि आप ये सब हॉबीज रखो, लेकिन प्रोफेशन, क्योंकि मेरे फादर भी इंजीनियर और कॉरपोरेट वर्ल्ड में थे और माय मदर यूज्ड टू टीच, तो वो उनका यही था कि हाँ मतलब आप कल्चरली एक वेल राउंडेड एजुकेशन आपका होना चाहिए और ये हॉबीज हो सकती है, लेकिन प्रोफेशन तो आपकी साइंस या इंजीनियरिंग यही कुछ होगा। तो ये ना बाय एक्सीडेंट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं म्यूजिक को या एक्टिंग को प्रोफेशनली करूं कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में थी तो एक बहुत बड़ा जर्मन प्रोडक्शन यहाँ पे मतलब आया था इंडिया में, और उन लोगों ने कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जो उनके प्रोडक्शन का पार्ट, और मैं सिलेक्ट हुई थी। और उस समय मतलब बहुत नामी नामी एक्टर्स जो एनएसडी के ग्रेजुएट्स हैं एंड ऑल, वो पार्ट थे उस प्रोडक्शन का।
1: वाह,
0: तो दैट एक्चुअली चेंज्ड माय मतलब दिमाग
1: विजन।
0: दिमाग खराब हो
1: अच्छी खासी लड़की
0: गया।
1: जो एकेडमिक्स
0: अच्छी
1: में जा
0: खासी
1: रही
0: मतलब साइंस की जो है बैंड बज गई
1: क्योंकि आप तो केमिस्ट्री पढ़ रही थी।
0: बिल्कुल। और वो उस वर्कशॉप के बाद फिर मैंने बैरी जॉन के साथ और एक वर्कशॉप और कांड हो गया, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में समर वेकेशंस में और एक वर्कशॉप किया, और उसमें और इतना ज्यादा मजा आया, मतलब ठंड, एक तो मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है,
1: अच्छा,
0: ठंड में किसी कोल्ड यूनिवर्सिटी में यूएस में जाके मैं लैब में बैठ के रिसर्च करूंगी, और ये देखो मतलब स्टेज पे हम गाना गा रहे हैं और एक्टिंग, क्या मजा है।
1: वाह वाह। जब ये बात घर वालों को पता चली तो क्या रिएक्शंस
0: तो
1: थे? टीचर मम्मी जी और कॉरपोरेट पापा
0: उनको मतलब हार्ट अटैक आया और उसका पूरा, लेकिन मैं बिगड़ चुकी थी तब तक
1: तब तक तो काम पूरा।
0: और द थिंग वाज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो 100% स्कॉलरशिप, तो इसीलिए मेरे पिताजी और मम्मी ये नहीं कह सकते थे कि तुम्हारे एजुकेशन के लिए हम तुमको पैसे नहीं देंगे
1: पैसे तो वहां ऑलरेडी आ रहे थे
0: तो वो फुल स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बंद हो गई, कहती एक बिगड़ गई है दूसरे को नहीं बिगड़ने देंगे
1: तो वो सीधी राह पे चली गई।
0: अरे वो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: हाँ, वो मतलब शी इज एक्सट्रीमली ब्राइट एंड वो कमाल की है, बट वो भरतनाट्यम सीख रही थी, उसने रंगेतरम किया, लीला सैमसन जो बहुत ही नामी और
1: गुरु
0: कला
1: है।
0: क्षेत्र के हेड भी रह चुके हैं, उस समय वो दिल्ली में थे और उनसे सीख रही थी, और बहुत सीरियसली डांसर बनना चाहती थी, और लेकिन वो अभी भी कहती है कि अरे तुमने
1: तुम्हारी
0: दीदी
1: वजह से
0: दीदी को करने दिया लेकिन मुझे नहीं
1: क्या बात है, क्या कितनी सुनहरी यादें हैं लेकिन इन तमाम चीजों की, कि आप जिंदगी में पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं और फिर होता कुछ और है।
0: और फिर एनएसडी के बाद मेरे पिताजी हर 2 साल में ये कहते थे कि अच्छा चलो ये हो गया, अभी तुम एमबीए कर लो, ये बहुत इंटरेस्टिंग मिक्सचर है कि केमिस्ट्री के बाद तुमने यू नो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इन सब में तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और मैं एक्चुअली जीमैट के लिए पढ़ती भी थी,
1: अच्छा,
0: जैसे मैं सीरियसली कोई एग्जाम देने बैठूंगी ऐसा लगता था कि अभी बैठ जाऊं, एक बहुत अच्छी फिल्म मिल जाती थी फिर पापा को मैं कहती थी अरे मां पापा अभी देखो ये मिल गया है अब ये करते हैं। फिर मैं लंदन शिफ्ट हो गई थी बीच में 5 साल के लिए, ब्रिक लेन करके एक फिल्म की मैंने, और उसमें मुझे ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला, जूडी डेंच, एन हाथवे, इन सबके साथ मेरा भी सेम प्लेटफॉर्म में नॉमिनेशन था। तो उस समय मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गई कुछ सालों के लिए, वहां वेस्ट एंड में एक म्यूजिकल प्ले भी किया था इंग्लैंड करके। तो उस समय मैं गई थी लंदन बिजनेस स्कूल में ये पता करने के लिए कि चलिए अभी एमबीए किया
1: तो
0: जाए,
1: मजा आ रहा है
0: क्योंकि
1: मुझे
0: पापा,
1: सुन
0: हाँ पापा ने ऐसा। तो मैं वहां जब गई और
1: हाँ
0: उनके काउंसलर से मिली, तो मेरा करियर ग्राफ और ये सब

0: देख के और मुझसे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स को आकर एक इंस्पिरेशनल टॉक दे दो। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए। कहते नहीं नहीं नहीं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
1: आप यहाँ पढ़ो मत।
0: तो मैं लंदन में वेरियस बिजनेस स्कूल्स में इंस्पिरेशनल टॉक दे के अपने पॉकेट मनी कमा रही थी।
1: वाह वाह वाह, वहां भी पढ़ने वाला मामला तो बना ही नहीं।
0: नहीं, और मेरे पास एक वर्क परमिट था। सो आई वॉज लाइक, मैंने पापा को कहा कि पापा मुझे MBA करने की जरूरत नहीं है, वो 20 स्कूल्स तो मुझे बुला रहे कि आप यहाँ के इंस्पिरेशनल टॉक्स दो।
1: फिर मामला टल गया।
0: फिर हाँ, परमानेंटली मामला टल गया।
1: मतलब ये है कि ये माना जा सकता है कि डेस्टिनी आपको दूसरी तरफ खींच रही थी।
0: हाँ, ऐसा दैट इज द थिंग दैट वो आई रियली बिलीव दैट लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू कीप मेकिंग प्लान्स।
1: राइट।
0: तो मैंने कोई प्लान नहीं बनाई। अभी तो मैंने एक फिल्म भी बनाई है जो इस वक्त हम लोग फेस्टिवल्स वगैरह में टूर कर रहे हैं। बट
1: उस फिल्म का नाम है फुल प्लेट।
0: फुल प्लेट। अब उसको लेकर भी मैंने कोई प्लान नहीं बनाई थी, वो भी अचानक ही बन गई। इनफैक्ट जो फिल्म मैं 3 साल से लिख के बैठी हुई हूँ, जिसको मुझे बनाना है, वो अब तक मुझे उसका फंडिंग नहीं मिला है।
1: और ये बन गई।
0: मतलब ये अचानक से किसी ने मुझे कहा कि हमारे पास इतने पैसे हैं, बना दो। और मैंने कुछ लिखा भी नहीं था उस समय।
1: हाँ,
0: तो तब मैंने लिखना शुरू किया और विद इन अ पीरियड ऑफ 3.5 मंथ्स हम लोग फ्लोर पे थे।
1: क्या बात है। तो ये होता है फ्लो ऑफ एनर्जी, कैसे हाँ, क्या काम करता
0: एक
1: है।
0: एक चीज है कि ये शायद मुझे ट्रेनिंग ऑफ एक्टिंग ने दी है। नसीर सर के क्लासेस जो है, नसीरुद्दीन शाह, जिनको मैं बहुत बहुत अपना गुरु मानती हूँ एक्टिंग में। मतलब मेरे बहुत गुरुज हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। रॉबिंदा है, बज्जू भाई है, अनामिका अक्सर है, अनुराधा कपूर है। और थर्ड ईयर में जाके एक जो कल्मिनेशन होता है ना, उसमें टुवर्ड्स द एंड नसीर सर आए और उन्होंने उन सब चीजों को एक बहुत साइंटिफिक वे से स्टूडेंट्स को समझाने की। और एक्टर ना बहुत अच्छे हैं हमारे देश में, लेकिन टीचर जो इतने कमाल के एक्टर हैं और इतने कमाल की टीचर है, वो सिर्फ नसीरुद्दीन शाह है।
1: वाह, क्या प्यारी बात।
0: तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। और एक वो चीज जो कहते हैं ना कि हियर एंड नाउ और डोंट थिंक, जस्ट रिस्पॉन्ड टू द मोमेंट एंड लिसन टू योर को एक्टर एंड रिस्पॉन्ड। उसके प्रैक्टिस करते करते करते करते जिंदगी में भी ये हो जाता है कि आप कुछ भी आगे का प्लान मत करो, जो हो रहा है उसी के फ्लो में आप करते रहो, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। मैं पंडित रविशंकर से एक बार मिली थी, क्योंकि अनुष्का मेरी दोस्त भी है, उनकी एक्स हस्बैंड है जो राइट, उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था एना कारेनिना, उसमें अनुष्का ने एक गाना कंपोज किया था जो मैंने गाया था। उसी दौरान मैं पंडित जी से एक बार मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि जा हार ता हबे।
1: वाह,
0: ये उन्होंने टैटू में लिख दिया था।
1: क्या बात है, क्या बात है। और वो तो कितनी मीठी बांग्ला बोल,
0: जा हार ता हबे।
1: वाह, कितना सुंदर ये वाक्य है। यहाँ एक गाने की जगह बनाई जाए। अब जब पंडित रविशंकर का जिक्र है,
0: हाँ जी,
1: तो एक सजेशन करता
0: आप। हाँ, बिल्कुल वही सजेशन जो आप मुझसे कह रहे थे।
1: हाँ,
0: अलाउद्दीन खान साहब का
1: वो बजा सकते हैं,
0: या
1: माता सरस्वती शारदा, जिसका कनेक्शन उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब से है, और वहां से वो रचना उनके शिष्यों से होते हुए जयदेव जी के पास जाती है और फिर वो फिल्म आलाप में आती है।
0: बिल्कुल,
1: ये सुनते हैं। ये समर्पित है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब को, मैहर घराने के संस्थापक, और पंडित रविशंकर
0: शंकर जी को।
1: सुनते हैं माता सरस्वती शारदा।

0: एक बार फिर वापस एनएसडी की तरफ चलते हैं. आपका एनएसडी में एडमिशन हो गया है और आप अपने ड्रीम को परस्यू करने निकली हैं. पीछे की तरफ केमिस्ट्री है.
1: हाँ, तब तक भी ड्रीम नहीं, मतलब तब तक मैंने फिर भी तो, मतलब जब एनएसडी में भी मैं गई तब भी मुझे ये पता नहीं था कि मुझे एक्टिंग करनी है या डिजाइनिंग करनी है या
0: डायरेक्शन करना है.
1: हाँ, डिजाइन और डायरेक्शन. और एक्चुअली फर्स्ट ईयर के बाद मैंने सोचा था मैं डिजाइन और डायरेक्शन ही करूंगी, क्योंकि आई वॉज so inspired by just cinema that I was watching. और मतलब चाहे वो इंडियन सिनेमा हो, कि संत तुकाराम हो या राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे पुराने जैसे इंडिया में सिनेमा की जो बिगिनिंग थी, या फिर वो फ्रेंच न्यू वेव हो, पोलिश सिनेमा हो, ये सब देख के दिमाग एकदम
0: हिल गया.
1: हाँ, सत्यजीत रे और मृणाल सेन और मतलब और इंडियन कमर्शियल फिल्म्स भी. और हमारी जो टीचर हुआ करती थी, जो फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करवा रही थी हमें, गायत्री चैटर्जी, वो FTII में भी पढ़ाती थी. वो इतने अच्छे से मतलब समझाती थी और एनालिसिस मतलब करती थी. सो आई वॉज सो मच इन लव विथ. और हमको इंटरनेशनल प्रोडक्शंस देखने को मिलते थे थिएटर में. फिलिप जॉते, मतलब उनका प्रोडक्शन देख के मेरा दिमाग हिल गया था.
0: बिल्कुल.
1: पीना बाउश, ये सब जो थिएटर प्रोडक्शंस हैं. और हमारे एनएसडी में एक रशियन डायरेक्टर आए थे, एक पोलिश डायरेक्टर आए थे हमारे साथ काम करने के लिए. तो जो इंट्रोडक्शन हमें वर्ल्ड थिएटर से भी मिला और इंडियन क्लासिकल फॉर्म से, डांस से, कथकली, ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि यार डिजाइन डायरेक्शन में बहुत इंस्पायर हो गई थी. लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद जब हमें चूज करना होता है तो हमें बच्चू भाई और सब मेरे जो जितने टीचर्स थे उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुम एक्टिंग करो. डिजाइन डायरेक्शन कभी भी कर सकते हो बाद में, अगर तुम्हें मन किया तो कर लोगे, पर अभी एक्टिंग लो. तो मैंने अपने गुरु जो है सब उनकी बात मानी
0: और एक्टिंग की तरफ आगे बढ़ती गई. एनएसडी के आपके बैच में कौन कौन लोग थे? आपके बैच में
1: बहुत लोग थे और वो लोग सब मतलब थिएटर कर रहे हैं अपने रीजन्स में. अभी मैं फुल प्लेट लेकर केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी.
0: जी जी.
1: और वहां बहुत बढ़िया रिस्पांस था और मेरे दो बैचमेट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया नहीं और वो ऑडियंस में बैठे हुए थे.
0: वाह वाह.
1: और बहुत साल बाद उनसे मुलाकात हुई और स्क्रीनिंग के बाद वो आए और मैंने कहा ओ माय गॉड, एंड दे फेल्ट सो गुड कि मैंने एक फिल्म बना दी.
0: बिल्कुल.
1: और एक्चुअली ये फिल्म बनाना बहुत मुश्किल भी रहा है फॉर एवरी विच वे, क्योंकि जब मैं इनिशियली मतलब इंडिपेंडेंट फिल्म बनाना तो हमेशा ही मुश्किल होता है. शूटिंग के दौरान भी दिक्कतें आईं, फाइनेंशियल दिक्कतें आईं. जब बड़े मुश्किल से हम लोगों ने फाइनली फिनिशिंग फंड्स लेकर, एक और को प्रोड्यूसर लेकर हम फिनिश करने वाले थे, एडिट खत्म हुआ, देन आई गॉट डायग्नोस्ड ऑफ अ टर्मिनल इलनेस. और उसके दौरान मैंने पिक्चर खत्म की, पोस्ट प्रोडक्शन किया उसका. So it was a very difficult process, but then like I said ki I think no pain no gain.
0: और इन तमाम मुश्किलों को, उतार चढ़ावों को सहत कर और उनसे पार होते हुए ये फिल्म पूरी हुई. क्या ये आपका पहला डायरेक्शन था?
1: नहीं, मैंने रोम रोम में करके एक फिल्म बनाई थी.
0: इससे पहले बना चुकी थी.
1: इससे पहले. हाँ. और
0: नवाज थे उसमें?
1: नवाज था उसमें. और नवाज और मैं एक फिल्म शूट कर रहे थे लायन करके, एक बहुत अच्छे ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर हैं गार्थ डेविस, एंड लायन ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है. तो हम दोनों कलकत्ते में साथ में शूट कर रहे थे उसको, एक्टर्स. तो फ्री टाइम पे बात हो रही थी, मैंने कहानी ऐसे उसको सुनाई कि यार ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ वेनिस में. उसको बहुत इंट्रीगिंग लगी. उसने कहा यार तनिष्ठा ये इसको लिखो यार, बहुत कमाल की कहानी है. तो मैंने लिखना शुरू किया और फिर हम लोग मिलते रहे. नवाज और मैंने एस्को एक्टर्स पहले भी काम किया है और वो मेरे सीनियर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से. हाँ. तो हम मिलते रहे और मैं लिखती गई और फिर उसको मतलब ही रियली लाइक्ड इट.
0: क्या हुआ था आपके साथ रोम में?
1: मतलब सुपर नेचुरल स्टोरी थी.
0: सुपर नेचुरल.
1: हाँ, मतलब वो एक्सपीरियंस. खैर, देन मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि उसको मैं बनाऊंगी.
0: Right.
1: मैंने सोचा था हम लिखते हैं, हम दोनों एक्टिंग करेंगे और किसी को देते हैं मतलब. बट ये नवाज ने मुझे कहा कि यार तूने जैसे लिखा है ना, ये तेरे दिमाग से आया है, ये कोई नहीं और नहीं बना सकता. मैंने कहा बट मैंने कभी फिल्म बनाई नहीं है. सो उसी ने मुझ में ये कीड़ा इंसर्ट किया।
0: पहले एक्टिंग का कीड़ा ऑलरेडी था, उसके बाद ये एक और आ गया।
1: फिर बनाई ये पिक्चर हम लोगों ने।
0: शुरुआती दिक्कतें क्या थी?
1: कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इरोस तब बहुत बड़ा स्टूडियो था, वो ऑन बोर्ड आ गया था। दिक्कत बाद में हुई क्योंकि उसके बाद जब हमने फिल्म बना ली, फिल्म बनाने के बाद अगेन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ, लेकिन उसके बाद इरोस वेंट थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। तो उनका दे हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन द फिल्म, बट दे वर मतलब सबसे बड़ा स्टूडियो आप सोचो, फिर दे वेंट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। उसके बाद पैंडेमिक आ गई, सब कुछ बंद हो गया। सो लोगों की वो स्ट्रगल होती है कि फिल्म बनाने में, ये बनने में इतनी मुश्किल नहीं हुई, बट आई कुडंट डू एनीथिंग विद द फिल्म लेटर। मतलब दो तीन फेस्टिवल्स में गई, उसके बाद रिलीज नहीं कर पाए हम।
0: अभी
1: पता नहीं। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट फिल्म जो है, एक एंथोलॉजी सीरीज अमेजोन के लिए है, अनपॉज्ड करके उसका एक सेगमेंट रैट अटैट, वो डायरेक्ट किया मैंने। और फुल प्लेट मेरी सेकेंड फीचर फिल्म है, जिसको हमने बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अगेन वर्ल्ड प्रीमियर किया। वहां मुझे विजनरी डायरेक्टर अवार्ड मिला। फिर फ्रांस में वसूल में हमें पीपल्स चॉइस अवार्ड और क्रिटिक्स स्पेशल मेंशन मिला। केरला, मैंने बताया केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, धर्मशाला, इसमें हमने स्क्रीनिंग की। अभी शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है और सेंट जॉन्स मिनियापोलिस में हमने यूएस प्रीमियर की उस फिल्म की।
0: इतना सारा नाम आपकी फिल्म कमा रही है, कैसा लगता है?
1: बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल थी ये फिल्म बनाना।
0: इसका आइडिया कहाँ से आया था? वो तो एक वेनिस की सुपरनेचुरल कहानी आपने बताया। बस इतना ही एक क्लू छोड़ा आपने, इसका मामला क्या था?
1: ये एक लूजली एक रियल पर्सन पे ही है, जो मतलब मैं क्लियरली उतना नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाएगी। पर मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया इनको, और लेकिन मैंने कुछ लिखा नहीं था। मेरे दिमाग में था कि यार ये बहुत कमाल है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इस कहानी में। पर जब मुझे मेरे जो फर्स्ट प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया अचानक कि छोटी बजट की कुछ भी, किसी को भी लेना है ले लो, जो भी बनाना है बना लो, तब मैंने लिखना शुरू किया। मुझे लगा कि यार ये तो कभी हो नहीं सकता आज के तारीख में, क्योंकि आज आप किसी भी स्टूडियो के पास जाओगे तो उनके मैंडेट्स हैं कि

0: वो किस तरह की फिल्में देखना चाहते हैं आपको वो लिखना पड़ता है।
1: यहां तो पूरी आजादी है।
0: और कल हम लोग एक्चुअली इस इवेंट में भी यही बातें कर रहे थे कि पहले ना कमर्शियल सिनेमा भी जब बनती थी वो उस समय सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी जिस चीजों से गुजर रही है, राइटर्स उनका रिफ्लेक्शन ऑडियंस तक लेकर आते थे। मार्केट प्रेशर की मार्केट ये चाह रही है इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ये नहीं होता था। पर अब वो नहीं है क्योंकि स्टूडियो सिस्टम जो अमेरिका में बहुत सालों से है वो यहां फुल्ली आ गया है।
1: और कुछ अलग ही रूप में आया है।
0: हाँ, वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो वो एल्गोरिथम से हमें बताया जाता है कि यार जो है ना मतलब लोग ये चाह रहे हैं तो ये लिखो ये बनाओ। आजकल हम ये चाह रहे हैं, आजकल थ्रिलर्स चल रहा है, आजकल रोम कॉम्स चल रहे हैं, आजकल यू नो यूथ पे ऐसे फिल्में चल रही है, आज ये सोशल ड्रामा नहीं चलेगा या म्यूजिकल्स नहीं वर्कआउट हो रहा है, ये सब एल्गोरिथम्स बता रही हैं आपको। और उस हिसाब से आप तो जो फ्रीडम होती है आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन की, वो कहीं पे यही बात हो रही थी, हम अपने आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी कैसे इसमें बरकरार रखें, क्योंकि अगर हम आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें एक पैसा भी नहीं मिलेगा
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि इन फिल्मों के लिए ऑडियंस है, बहुत है, क्योंकि हमारे देश के जो डाइवर्सिटी है उसमें इन फिल्मों के लिए बहुत बड़ा ऑडियंस है, लेकिन जो गेट कीपर्स हैं जो हमें मदद करते हैं उन तक पहुंचने में, वो पहुंचने नहीं देते हैं।
1: बिल्कुल सही है। यहां एक गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: गाना कौन सा होगा?
0: बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों।

0: फिर से एनएसडी की तरफ चलता हूँ, इसलिए क्योंकि एनएसडी में आपने एक्टिंग का डिप्लोमा लिया, हालांकि आपने डायरेक्शन की तरफ घूमने की कोशिश जरूर की लेकिन वो कामयाब नहीं होने दी गई है ना। अब बात यह है कि एक्टिंग के ऑफर्स तो आने लगे थे और पहली फिल्म जो है वो बड़ी इंटरनेशनल टाइप की फिल्म आपने की थी, वहां से आगे की बातें करते हैं।
1: मेरी एक्चुअली पहली फिल्म थी अनवर जमाल की एक फिल्म स्वराज।
0: अच्छा, अनवर साहब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो
1: जी जी जी, और उन्होंने एनएसडी में रहते हुए ही जब एक प्ले देखने आए थे वो अपने पत्नी के साथ, सहजोजी के साथ, वहां उन्होंने मुझे देख के मुझे कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं। और सारे एनएसडी के मेरे सीनियर्स थे एक्टर्स, चार औरतों की कहानी थी वो।
0: ओके।
1: और उन्होंने वहां से मुझे कास्ट की और हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक करते थे
0: गाना,
1: क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहां बिजली नहीं थी।
0: अरे अरे।
1: और हम गांव में मतलब रह रहे थे, इतना मजा आया था ना राजस्थान के गांव में। और शाम में मतलब 6:30 के बाद अपने हट में जाओ रजाई के अंदर, और पूरी रात हम गाना गाते थे और सुबह 4 उठ के नहा के शूटिंग, क्योंकि 6:30-7 से हम लोगों की शूटिंग शुरू हो जाती थी, हमको तैयार होना पड़ता था। बहुत मजा आया। वो मेरी पहली फिल्म थी स्वराज, एंड स्वराज को नेशनल अवार्ड भी मिली थी सोशल ड्रामा के लिए, बेस्ट सोशल ड्रामा। फिर उसके बाद मैंने एक छोटी सी फिल्म की बम्बई में बस यूं ही करके, और फिर मुझे बस यूं के बाद राजा मेनन की फिल्म, जो अभी बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, उन्होंने एयरलिफ्ट बनाई, उनके साथ मैंने 2 पिक्चरें की, बस यूं ही और 12 आना। उसके बाद मुझे मिली शैडोज ऑफ टाइम, जो एक जर्मन प्रोडक्शन थी और एक ऑस्कर विनिंग जर्मन डायरेक्टर फ्लोरियन गैलनबर्गर उनकी फिल्म।
0: ऑडिशन से मिली थी?
1: ऑडिशन से, बहुत राउंड्स ऑफ ऑडिशन थी। हाँ, और उस समय बड़े बड़े स्टार्स जो हैं वो कंसिडरेशन में थे उस रोल के लिए,
0: जिनके नाम हम नहीं लेना चाहेंगे।
1: मुझे लगा था कि यार मतलब वो बड़े, बहुत बड़े स्टार्स थे, मैंने कहा मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन। बट अगेन मुझे इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि वेस्ट में ना वो लोग लिपसिंग नहीं करते हैं, और रोल था एक कोठे में जो गाना गाती है और नाचती है उस औरत का, एंड फ्लोरियन वांटेड कि ऑब्वियसली जो एक्टर है वो लाइव गाएंगे, ही वांटेड अ सिंगर। तो मैंने वहीं पे स्कोर किया।
0: क्या बात है।
1: कि और मतलब हमको डांस भी करना था वहां पे और गाना भी था, एंड वो जो गाना है बंगाली ठुमरी थी जो आई हैड टू सिंग फॉर दैट फिल्म।
0: यू हैव टू सिंग।
1: ओके।

0: तोमा नोई।
1: क्या सुंदर तो बोल है, मतलब अद्भुत, क्या लाइन है वो, कामना के फूल।
0: हाँ।
1: क्या बात है, सुंदर।
2: अभी आप सुन रहे थे तनिष्ठा चटर्जी से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन किया मनीषा सिंह ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

शाम की दहलीज पर बैठे हैं तेरे इंतजार में, एक दिया जलता है बुझता है तेरे इंतजार में। पूछती है मुझसे अक्सर ये हवाएं तेरा हाल, रास्ते भी थक गए हैं तेरे इंतजार में। आओ आ भी जाओ कि हमने तो जिंदगी लिख दी तेरे इंतजार में। आंखों से मेरी इसलिए लाली नहीं जाती, यादों से कोई रात जो खाली नहीं जाती। हम जान से जाएंगे तभी बात बनेगी, तुमसे तो कोई राह निकाली नहीं जाती।

पलकों की मुडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप, गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब तक तो था उससे बहुत गहरा था रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। कुछ लोगों की हर दौर में पड़ती है जरूरत, कुछ लोग कभी दिल से निकाले नहीं जाते।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल के दर्द को छुपाना कितना मुश्किल होता है, टूट कर फिर मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है। जब दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। टूटा हुआ आईना भी किसी ने जोड़ा है क्या, मोहब्बत ने आज तक किसी को छोड़ा है क्या। ये जो सुन रहे हो तुम इतनी गौर से मेरी बातें फरियादे, तुम्हारा दिल भी किसी ने तोड़ा है क्या।
1: तुझे

कभी ये दुआ कि वो मेरा है, फकत मेरा, कभी ये डर कि वो मुझसे, कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये इल्तिजा के उसे मिल जाएं सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ के वो खुश मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना के बस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर के उसकी निगाहों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश के जमाना हो मुंतजिर उसका, कभी ये वहम के वो किसी से मिला तो नहीं, कभी ये आरजू के वो जो मांगे मिल जाए, कभी ये वसवसा के उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं।

मुझे ये खुशगुमानी थी कि तुम मेरी सदाओं पर किसी लम्हा पलट कर किसी पल तो मुड़कर देखोगे, बिल आखिर लौट आओगे। मगर कुछ इस तरह तुमने हुनर सीखा नजर अंदाज करने का, मुझसे किनारा करने का, मुझे मायूस करने का। मगर जाने दो, छोड़ो भी, अपनी किस्मत में चाहत नहीं शायद, फकत इतना बता दो कि मोहब्बत हमने की थी।

साथियों, अब वक्त आ गया है छाया गीत कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।

0: सराहने नए पुराने।
1: विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: जूली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी की बोल, राजेश रोशन का संगीत।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रही हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

किशोर कुमार की आवाज में नमक हराम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम तराने नए पुराने विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को सिद्धार्थ
4: और पूजा का प्यार भरा नमस्कार। सिद्धार्थ, किसान वाणी में हम अपने श्रोताओं को खेती से संबंधित जानकारी तो देते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
3: जी हाँ पूजा, आज किसान वाणी के सफर में हमारे बीच खास विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे और जिनसे हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस तरह करें। और पूजा, हम अपने किसान भाई बहनों से ये भी साझा करेंगे मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह, साथ ही आपको बताएंगे मंडी का भाव। पूजा, भारत सरकार किसानों के लिए बहुत

0: सारी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। और किसानवाणी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना की जो किसान भाई बहनों के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम, कीट एवं रोगों से फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि पूजा, कई बार ऐसा होता था कि फसल जब खराब हो जाती है किसान की, तो उसको बहुत घाटा होता था। तो ऐसे में ये योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है।
1: जी श्रोताओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अधिसूचित फसलों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर आपकी फसलों को नुकसान होता है तो पात्र किसान भाई बहनों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का दावा दिया जाता है।
0: और पूजा, यहाँ पर ये भी अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि योजना के तहत जो किसानों का प्रीमियम है उसे भी बहुत कम रखा गया है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को बीमित राशि का केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम ही देना होता है। और जो बाकी प्रीमियम बचता है उसका वहन केंद्र और राज्य सरकारें करती हैं।
1: ये तो बड़ी कमाल की बात है
0: जी।
1: और साथ ही साथ जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फसल का बीमा करा लेना चाहिए। इसका आवेदन बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन के समय आपको अपना आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण, भूमि और बोई हुई फसल की जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी होता है।
0: और पूजा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि यदि बीमित फसल को किसी प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो किसान को निर्धारित समय के भीतर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों या बीमा कंपनी को देनी चाहिए ताकि दावा प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके।
1: बिल्कुल, इसलिए समय पर अपनी फसल का बीमा जरूर कराएं और इस योजना का पूरा लाभ लें। और इस पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो फिर अपने आसपास के कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र, बैंक या फिर कॉमन सर्विस सेंटर से आप संपर्क कर सकते हैं।
0: और पूजा, साथ ही किसान भाई भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7, एक बार दोबारा सुन लीजिए, कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 1-4-4-4-7 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के व्हाट्सएप चैट बॉट नंबर 7-0-6-5-5-1-4-4-4-7 पर भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। खरीफ का मौसम हमारे देश की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और दलहनी फसलों की अच्छी पैदावार काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि पौधों को सही समय पर, सही मात्रा में और संतुलित रूप से पोषक तत्व मिले। केवल उर्वरकों का अधिक प्रयोग ही समाधान नहीं है, बल्कि मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे उत्पादन तो बढ़ता ही है, साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहती है और साथ ही साथ खेती और अधिक लाभकारी भी हो जाती है।
1: जी हां श्रोताओं, खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलसाराम, वरिष्ठ वैज्ञानिक, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम किसान वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब, चर्चा का जो विषय है उसके अनुसार अपनी बात, ज्यादा खाद डालने को ही अच्छी पैदावार का उपाय मानते हैं, क्या ये सोच सही है?
2: नहीं, ये किसानों का एक अपना बहुत ही गलत परंपरा या जिसको कहिए कि विचार है कि जितना फसल को आवश्यक हो उतना ही पोषक तत्वों को उसमें डालना चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि सभी एरिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी हो
1: जी।
2: जो हर खेत में या हर 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे उनकी आवश्यकता
1: बदल जाती है
2: और उसके अनुसार उनको प्रबंधन करना चाहिए। और इसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज्यादा अपनी मृदा का सोयल हेल्थ कार्ड बनवा लेना चाहिए और उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है स्टेट का, उससे या वहाँ पे जो केवीकेज है या जो ICR के संस्थान है या फिर कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो इसमें काम करती हैं, वो मिट्टी की जांच करके उनको NPK और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन किसानों को लगता है कि उनके सूक्ष्म पोषक तत्वों की

0: की कमी है तो वो उनका भी अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन सॉयल हेल्थ कार्ड फ्री से बना के दिया जाता है जिसका कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो वो बनाना उनके लिए अति आवश्यक है। अगर वो फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसलों की लागत है वो बढ़ती है और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होता है। इसमें आप जैसे नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रेट के रूप में सोयल के अंदर लीचिंग होता है, वो ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट में लॉसेस हो जाते हैं तो वो भी हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ही नहीं करते बल्कि ओजोन लेयर को डिप्लीट भी करते हैं, कुछ ये भी देखा गया है।
1: और डॉक्टर साहब आपने अभी बताया मृदा की जांच करानी चाहिए समय समय पर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच किसानों के लिए कितनी आवश्यक है और इसे कितने अंतराल पर हमें कराना चाहिए।
0: मिट्टी की जांच बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना आज के समय में खेती करना कोई फायदे का सौदा हो ही नहीं सकता। लेकिन कितने अंतराल पे करवाए ये एक बहुत बड़ा आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए लगभग ऐसा मानते हैं कि 2-3 साल के बाद में हमारे जो खेत है जहां हम काश्तकारी कर रहे हैं उसका फर्टिलिटी का जो स्टेटस होता है या कहिए कि पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है, वो लगातार किस तरह की फसलें लेते हैं या उसके अंदर किस तरह की ऑपरेशन करते हैं किसान या कितना हमारी सोयल बह रही है या बाहर से आ रही है, तो वो चेंज होती रहती है। तो से कम 3 साल के इंटरवल पे एक बार अगर उसको फिर से करवा ले तो बहुत ही बढ़िया रहता है।
1: डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सॉयल हेल्थ कार्ड है जांच के लिए किसान को कहाँ जाना होगा।
0: सबसे पहले तो ये है कि जितने भी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैं उनके पूरे देश में कवरेज है, हर स्टेट का है, केवीकेज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटीज के भी हैं, यूनिवर्सिटीज भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ICAR के अपने संस्थान भी हैं, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसमें काम करती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, तो कहीं भी किसान अपनी सुविधा अनुसार इनसे मिल सकता है, इनसे मिल के अपनी मृदा की सैंपल और पानी के सैंपल उनको दे सकता है। तो उसके पास में एक अपना जो सोयल का और पानी का ये रहता है कि हमारे यहाँ पे किस तरह का जो पानी है सिंचाई के लिए वो उपलब्ध है और हमारी जो मृदा है उसका न्यूट्रिएंट या उसका पोषक तत्वों का स्टेटस क्या है, तो वो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने सॉइल टेस्टिंग के बारे में और सॉइल कार्ड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी। हम अपने श्रोताओं के लिए एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, ये विषय है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल जो हमारे सामने इस वक्त आता है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम अक्सर बात करते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, यानी कि एकीकृत रूप से अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन को एक समग्र विषय के रूप में लेकर चलें तो उसको किस तरह से हम देखते हैं। दरअसल अगर उसे हम आसान भाषा में समझाना चाहें तो वो क्या है और हमारे किसान भाई बहनों को उससे क्या लाभ मिल सकता है।
0: देखिए, जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम करते क्या है कि उसमें जैसे हमारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइजर और इन सब का जो हमारी सोयल के अंदर जिस पोषक तत्वों की हमारे पास सोयल हेल्थ कार्ड होता है जिनकी कमी होती है उसके अनुसार हमें कितना FYM या ग्रीन मैन्योरिंग या वर्मी कंपोस्ट या उसके साथ में सीड ट्रीटमेंट के रूप में बायो फर्टिलाइजर्स या चाहे एजेटोबैक्टर है, फास्फोर सोलिबिलाइजिंग है, पोटास सोलिबिलाइजर है या माइकोराइजा है या कुछ वाम वगैरह भी आती, तो उनका और प्लस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया, फास्फोरस, DAP या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उनका एक समायोजन करते हैं कि ना उसको ज्यादा देते हैं ना कम देते हैं ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहे और हमारी फसल भी एक कम से कम लागत में अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सके। इसलिए उनको एक समायोजित फॉर्म में हम लाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायो फर्टिलाइजर और ये सब का इंटीग्रेशन हो।
1: बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खरीफ मौसम में वर्षा अक्सर देखा गया है कि काफी ज्यादा हो जाती है, तो ज्यादा वर्षा होने की वजह से उर्वरकों के बह जाने की समस्या रहती है, तो इससे बचने के लिए किसान क्या कर सकते हैं।
0: देखिए, उर्वरकों के बहने की जो ज्यादातर समस्या होती है वो नाइट्रोजन के केस में होती है, क्योंकि फास्फोरस और पोटास की जो अप्लीकेशन है वो बुआई से पहले ही कर दी जाती है और उसका मृदा के अंदर ही ज्यादातर आज तक जितने भी किसान कर रहे हैं वो इनकॉर्पोरेशन होता है। लेकिन जो यूरिया वो बह के रन ऑफ के तौर पे भी चली जाती है या फिर उसका वोल्टिलाइजेशन भी हो जाता है, कई तरह के लॉसेज होते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि एक तो हम स्प्लिट डोज जिसको बोलते हैं कि एक साथ नहीं लगा के बार बार उसको लगाए, हर क्रॉप के लिए एक दो तीन चार स्प्लिट में बांटा हुआ है, उसके बाद में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि फोलियर एप्लीकेशन दें, जैसे यूरिया का छिड़काव करें उसके ऊपर, तो वो क्या है कि डायरेक्टली आपके पत्तों के ऊपर जाता है और वो अब्जॉर्ब हो जाता है और उसके लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं चाहिए उनको। क्या है कि अगर आपने अभी यूरिया की फोलियर एप्लीकेशन किया है और बारिश हो गई 5-6 घंटे बाद में, तो भी वो बेकार नहीं जाता है, ना ही वो धूप के जाता है, पूरा उसी ड्यूरेशन में पौधा उसको मैक्सिमम ले लेता है। उसके बाद में जैसे नीम कोटेड यूरिया होती है तो उनमें क्या होता है कि स्लो रिलीज होता है, बाकी तो क्या है कि पोषक तत्वों को ऐसे एक ही समय में वो रिलीज कर देते हैं, लेकिन उनको स्लोली रिलीज करते हैं, तो जो पौधों का अब्जॉर्प्शन का टाइम होता है
1: जी,
0: जैसे आज लगाया एक तो 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा, 1-5-7 दिन तक वो बने रहते हैं, तो उनको समय ज्यादा मिल जाता है, तो वो ज्यादा मात्रा में अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
1: तो पूजा, बात करते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: उतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सब यही डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। श्रोताओं, हम आज बात कर रहे हैं खरीफ फसलों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं अपने आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ। डॉक्टर साहब, आपने नीम कोटेड यूरिया का जिक्र किया, तो एक सवाल मन में ये आ रहा है कि क्या नीम कोटेड यूरिया ज्यादा उपयोगी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद रहता है? और साथ ही साथ चूंकि यूरिया का जिक्र हो ही गया है, तो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि यूरिया का सही उपयोग के लिए आप हमारे किसान भाई बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, इनका जो नीम कोटेड यूरिया है वो ज्यादा उपयुक्त होती है, क्योंकि उसके अंदर जो फर्टिलाइजर की रिलीज करने का जो टाइम है, उसकी जो एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सोइल के अंदर, वो उसके अंदर कुछ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसका
2: स्लो रिलीज होता है,
0: स्लो रिलीज होता है, तो वही बेसिक उसका एक पर्पज होता है। तो जो भी किसान भाई, जैसे मान लो कि कुछ ऐसी फसलें हैं, स्पेशली धान है, जिनके अंदर वाटर रिक्वायरमेंट या जहाँ पे वर्षा ज्यादा हो रही है वहां पे इनका उपयोग करना चाहिए। लेकिन जिस एरिया में, जैसे खरीफ अपनी वर्षा आधारित होती है मोस्टली, कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और फिर भी उन सॉइल में थोड़ा बहुत यूरिया देना पड़ता है, क्योंकि वहां पे सैंडी सॉइल होती है तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, तो उस केस में क्या होता है कि उनको थोड़ा ही ड्यूरेशन मिलता है अब्जॉर्ब करने के लिए, तो वो कंट्राडिक्टरी भी देखा गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में ये फायदेमंद ही होता है
2: नीम
0: कोटेड यूरिया, कुछ एरिया को छोड़ दे जिनमें बहुत कम बारिश होती है और इमीडिएट ड्यूरेशन के बाद में उनमें ड्राई स्पेल आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो खरीफ है इसके अंदर वर्षा आधारित ही एरिया होता है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत इसका, बाकी तो ये सबसे है। और आजकल तो इसके लिए नैनो यूरिया भी एक विकल्प आ गया है, जो बहुत ही फास्ट और डायरेक्टली प्लांट को अवेलेबल हो जाता है, तो किसान भाई उसका भी प्रयोग उपयोग कर।
1: और डॉक्टर साहब, एक पारंपरिक खेती तो हो ही रही है, लेकिन उसके साथ आजकल तकनीकी आधारित खेती पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे में जो नई तकनीक आ रही है जैसे ड्रोन, सेंसर या डिजिटल कृषि, ये सब मिलकर पोषक तत्व प्रबंधन को और अधिक किस तरीके से प्रभावी बना रही है?
0: देखिए,

0: बहुत ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज जितना भी हमारा जो फसलों का उत्पादन है उसके अंदर अगर हम उसको सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं तो
1: जी
0: उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारी लागत कितनी आ रही है। और ये सब जो तकनीक हैं, डिजिटल कृषि है, आपका ड्रोन है, इनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे खेत के अंदर कौन सी समय किस पोषक तत्व की कमी है,
1: जी
0: और ड्रोन से हम कितने बड़े एरिया में तुरंत कॉलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी भी कई तरह की पेस्टिसाइड वगैरह भी हम उसमें डाल सकते हैं, इवन वीडिसाइड भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमारा डिजिटल मैप है, खेत का भी है, फसलों का है, तो हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं कि फसल का हमारे पास डिजिटलाइजेशन है तो हमें देखेंगे कि जिसका कलर ऐसा है तो ये पोषक तत्व है, क्या आवश्यकता है, तो हमें
1: जी
0: इस चीज का स्प्रे कर देना चाहिए, चाहे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हो।
1: डायग्नोसिस
0: तो
1: में आसानी रहेगी इससे।
0: डायग्नोसिस में भी है, और हमारा जैसे ऑपरेशन करते हैं
1: जी
0: वो समय भी बचाएगी, कॉस्ट भी बचाएगी, लेकिन उनकी जो इनिशियली कॉस्ट होती है, जो उसको हम इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, जैसे ड्रोन है परचेज करना है या दूसरी,
1: जी
0: वो कुछ समय ज्यादा होता है। इसलिए किसान कुछ कर रहे हैं जो इनोवेटिव फार्मर हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं।
2: जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ यहाँ साझा की।
1: हमने अपने श्रोताओं से वादा किया था कि आज हम उन्हें लोकगीत सुनवाएंगे, तो लगता है पूजा उसका समय आ गया है।
2: जी, तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लोकगीत।

0: लोकगीत के बाद श्रोताओं आइए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। डॉक्टर साहब, जलवायु परिवर्तन एक ऐसा विषय है जो आजकल चर्चा में काफी छाया हुआ है, तो जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा की अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो ऐसे में पोषक तत्व प्रबंधन की जो हमारी रणनीति है उसको किस तरह बदलना चाहिए?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और हमारा अतिवर्षा या कम वर्षा की स्थिति भी पैदा हो रही है
0: जी।
1: उसके साथ में हमारा टेम्परेचर भी कभी ज्यादा कम भी हो रहा है, तो ऐसे में हमें पोषक तत्वों को पौधों को डालने के लिए या उनको उपलब्ध करवाने के लिए हमें एक बहुत ही सटीक निर्णय लेने पड़ते हैं। जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है
0: जी,
1: वहाँ पे तो क्या करना होता है कि हमें पोषक तत्वों के अंदर कुछ जैसे नाइट्रोजन का ही ज्यादा रोल होता है, उनको बार बार अप्लाई करना कि जैसे हमें जितना भी डोज देना उसको नंबर ऑफ स्प्लिट बढ़ा देते हैं,
0: मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी
1: उसकी, और फोलियर एप्लीकेशन के ऊपर ज्यादा इम्फेसिस देते हैं, नैनो यूरिया पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और जहाँ पे शॉर्ट फॉल आ रहा है तो उसमें हमारी रिकमेंडेड डोज होती है। जैसे हमें पता है कि अभी ड्रॉट आने की स्थिति हो रही है तो हमें जरूरी नहीं है कि पूरा जितना रिकमेंडेड नाइट्रोजन है उतनी लगाएं, क्योंकि अगर उतनी हम लगाएंगे तो उस एरिया में पहले से पानी की कमी है और हमारी फसलें जल्दी सूख जाएंगी। तो उस समय हमें जो रिकमेंडेड डोज या जिसको हम बोलते हैं जितनी चाहिए उतनी, उसे कम कर देते हैं ताकि हमारी फसलें भले ही उससे जितना उत्पादन नहीं देंगे लेकिन कुछ समय लेट सूखेंगे। तो ये भी एक रणनीति होती है। अब हमें ये देखना होता है कि जिस एरिया में ड्रॉट आने की संभावना ज्यादा होती है वहां पे हम ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट या जिसको हम बोलते हैं FIM ग्रीन मैन्यूरिंग या कंपोस्ट है, ये सोइल के अंदर इनकॉर्पोरेशन ज्यादा करते हैं, तो इससे क्या होता है कि मृदा के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और ऑर्गेनिक मैटर भी सस्टेन रहता है
0: जी।
1: तो इसलिए इनका अगर समावेश करें तो ज्यादा अच्छा होता है।
2: और डॉक्टर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि खरीफ फसलों की अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे?
1: देखिए, सबसे अच्छा ये है कि किसान भाई अपनी फसलों को रेगुलर देखें। हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी है नहीं है, हमें यूरिया डालना है या नहीं डालना है। कई बार क्या होता है कि हम पड़ोसी लगा रहा है हम भी आके लगा देते हैं, नहीं, हमें ये देखना होता है कि अगर वाकई ही हमारी फसल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें LCC कार्ड भी होते हैं या हम कुछ और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं और उससे हमें पता लग सकता है।
2: जी जी, तो बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर तुलसाराम जी। आपने खरीफ फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में अत्यंत उपयोगी और व्यवहारिक जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी सलाह किसानों को वैज्ञानिक खेती अपनाने और बेहतर उत्पाद प्राप्त करने में निश्चित रूप से सहायक होगी।
0: कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ, अब हम अपने श्रोताओं को कृषि संबंधी सलाह भी दे देते हैं। चूंकि कृषि परामर्श कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसानों को दिया जाता है, तो उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का छिड़काव वे न करें और खड़ी फसलों और सब्जी की नर्सरियों में उचित प्रबंधन रखें।
2: बिल्कुल पूजा, और किसानों को सलाह दी गई है कि वर्षा मौसम में खरपतवारों की वृद्धि अधिक होती है, अतः सभी खड़ी फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई का कार्य शीघ्र करें तथा सभी फसलों में सफेद मक्खी तथा चूसक कीटों की नियमित निगरानी करें।
0: जी, और इसी के साथ इस मौसम में किसान भाई बहन स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें जल निकास का उचित प्रबंध रखने की व्यवस्था उनको करनी होगी।
2: और साथ ही वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो ये थी मौसम पर आधारित कृषि संबंधी सलाह।
0: अब हम जिक्र बाजार भाव का भी कर लेते हैं। सब्जियों और फलों के मंडी के भाव का जिक्र करें तो सबसे पहले सब्जियों की बात कर लेते हैं। आलू का बाजार भाव 18 रुपए प्रति किलो है और प्याज 30 रुपए प्रति किलो है। टमाटर 40 रुपए प्रति किलो, खीरा 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चल रहा है और शिमला मिर्च 60 रुपए प्रति किलो पर आगे चल रही है।
2: पूजा, अगर फलों के आज मंडी के भाव की हम बात करें तो आज सबसे पहले सेब की बात करते हैं जो कि 200 रुपए प्रति किलो का भाव रहा। केले की बात करें तो केला आज 25 रुपए प्रति किलो के भाव में चल रहा है। अमरूद की बात करें तो 80 रुपए प्रति किलो। पपीता की बात करें तो पपीता 30 रुपए प्रति किलो और तरबूज 22 रुपए प्रति किलो के भाव से मंडी में बिक रहा है।
0: तो श्रोताओं, ये है आज का बाजार भाव फलों और सब्जियों का। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब अपनी समाप्ति की ओर बढ़ चला है और सिद्धार्थ, अब हमें अपने श्रोताओं से अनुमति लेनी होगी।
2: तो लेते हैं किसान भाई बहनों से विदा। नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: आकाशवाणी है।
1: अब आप विशाल शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले
2: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
2: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वे मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस वर्ष फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। यह राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। उन्होंने कहा कि ये योजना लोगों को सशक्त बना रही है। ये योजना भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैराएथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़क कर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityananda Rai moved the bill in the Upper House, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. Earlier when the Upper House reassembled after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan took up the questionnaire amid uproar by the opposition members. Seven members asked questions which were replied to by the ministers. However, due to protests and sloganeering by the opposition members, the Chairman adjourned the House till 2 p.m. Earlier when the Upper House assembled at 11 a.m., Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge raised the matter of alleged theft of donations from the Ayodhya Ram Temple. Parliamentary Affairs Minister Kiran Riziju said the Congress and the Samajwadi Party, which oppose the Ram Temple in Ayodhya, are now attempting to mislead the public regarding the alleged theft of donations. Mr. Riziju said the house belongs to everyone and the main opposition party Congress is misusing the time allotted to them. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Minister of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. The ministry highlighted that previous governments lacked the political will to bring back fugitives, but the current government has made the extradition of fugitives a national priority. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mail accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said that the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see through Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. On media interaction by former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, the spokesperson said the interaction has been organized by a private media entity. He said the government has no involvement in it and neither does it endorse any views that may be expressed at the forum. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision, SIR, of the electoral roll in Delhi. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia today felicitated Indian athletes who returned from the Commonwealth Games 2026 after delivering historic performances in boxing, judo and para-athletics. During the felicitation ceremony held in New Delhi, the medal winners were presented cash awards of 30 lakh rupees for gold, 20 lakh rupees for silver and 10 lakh rupees for bronze. Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise resulting in a momentary change of altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. And that is the end of this news bulletin.
4: This is Akashwani Thura. Very good evening to all the listeners. It's time now to present you the song. And now we are presenting you Leave Out All the Rest from the band Linkin Park.

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एसी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरोन कितामोन और वोरापोल थोंगसा एनगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16, 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग यू किम

0: और तेई योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
1: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
0: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गार्गा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डोडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21, 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कोजिंग बाम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21, 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15, 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21, 17-21 से हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
1: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
0: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के योदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यो तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे। रौनक कोरिया के जियोन योक जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत इसराइल के डेनिल डुबो वेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चेन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए तो प्रशांत, कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गोबुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुणताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
1: विशाल, ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
0: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा, सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो यूल से होगा और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और मानसी सिंह कोरिया की किम जो युन से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स का जहां तक बात है तो ईशान भटनागर और श्रुति शर्मा की जोड़ी सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा से खेलेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी मलेशिया की लू बिंग कुन और नुरा किला मायसरा से मुकाबला करेंगी। जी प्रशांत, फिलहाल तो यही जानकारी।
1: विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डुरंड कप जो कि रांची में खेला जा रहा है, रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में रोमांचक खेल देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
2: डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनन ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डुरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स स्कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने

0: आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
1: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
2: काफी अच्छा लग रहा है, हमारे एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं। आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
0: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
2: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को ये उठा के चलते कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, तो मेन तो हमारा LA 20 है।
0: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, युशान हफीज और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाहत को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वाश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाहत ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
3: 4 years that I've played it, and I've always ended up being really close to it, but not overturning it. So yeah, I'm really glad that I was able to do it this year. Grown up playing Egyptians since I've started playing sports, so it doesn't really affect me so much when I go into court. It's just like playing another opponent, no matter what the nationality is. But yeah, I mean, doing it and getting close to doing it after Joshna, like you said, she's growing up, like looking at her playing the tournaments and you know watching her play squash, and I've really been inspired by her. So I think just getting to do it after her is something that I'm really happy. Talking to my coaches about it and seeing, you know, playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore. So I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players. I have 2 events in the PSA, in the professional circuit, before I go for the Asian Games. So I think I'm just focusing on that right now. But of course, Asian Games has been in the picture since the last one ended. So just focusing on that and building up to it as well.
0: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है, कोलकाता में डूरंट कप के मैच में मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला साउथ यूनाइटेड एफसी से हो रहा है। नवीनतम समाचार के अनुसार मैच में मोहन बगान ने 4-0 की बढ़त बना ली है।
4: इन अ डूरंट कप ग्रुप स्टेज मैच एट द विवेकानंद युव भारती क्रीड़ांगण इन कोलकाता टुडे मोहन बगान सुपर जायंट फेस साउथ यूनाइटेड एफसी। मोहन बगान होल्ड्स अ 4-0 लीड विद मनवीर सिंह स्कोरिंग 2 गोल्स व्हाइल अल्बर्टो रॉड्रिगेज एंड राहुल बेके एडेड 1 गोल ईच। कल्याण लाहा, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
5: साउथ कोरिया के मिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनित ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नु आंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलंबिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियागुआ एलेक्सी निसेर की कड़ी चुनौती को पार करते हुए 6-4, 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4, 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारे शावेज और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनित और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी। तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनित और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्य दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है, जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट, मध्यम दूरी की स्पर्धाओं, बाधा दौड़, कूद, थ्रो, रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी 1 साल बाद लेकिन 2 साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
8: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
9: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
6: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
9: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहां पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
6: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

0: ये है विविध भारती।
1: आज की फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित है, मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है भारतीय सिनेमा के बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, गायक और संगीतकार किशोर कुमार को।

0: लाया हूँ।
1: सन 1929 के अगस्त महीने की 4 तारीख को जन्मे किशोरदा ने तारीख यानी इतिहास में अपना वो स्थान बनाया कि उस ऊंचाई को किसी और कलाकार के लिए छू पाना लगभग नामुमकिन सा है। उनकी टाइमिंग, नाटकीयता, भूमिका की समझ और अदायगी, सब कुछ अद्भुत। सच तो ये है कि किशोरदा अपने आप में अभिनय और गायन की एक संपूर्ण संस्था।

मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में जन्मे किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली। उन दिनों आभास कुमार गांगुली के बड़े भाई अशोक कुमार हिंदी सिनेमा का एक स्थापित नाम बन चुके थे। परिवार के सदस्य अब नियमित रूप से मुंबई आने जाने लगे थे। मुंबई में किशोरदा की नई पारी की शुरुआत हुई किशोर कुमार के नाम से। 1946 में आई फिल्म शिकारी में उन्होंने पहली बार अभिनय किया। इसके दो बरस बाद सन 1948 में आई फिल्म जिद्दी में उन्हें पार्श्व गायन का मौका मिला।

सन 1951 में किशोर दा ने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आंदोलन में नायक की भूमिका निभाई। इसे निर्देशित किया था फणी मजूमदार ने। इसके बाद सन 1957 में किशोर दा ने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया। यह फिल्म ऋषि दा की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। लगभग उसी दौर में फिल्म नौकरी में किशोर दा ने एक गीत गाया जिसे पहले हेमंत कुमार गाने वाले थे, लेकिन बाद में सलिल दा ने फिल्म नौकरी का वो गाना किशोर दा से गवाया।

किशोरदा की अभिनय यात्रा जारी थी। अभिनय के साथ साथ फिल्मों के लिए गायन भी जारी था। अपने आप पर फिल्माए गए गीत तो उन्होंने गाए ही, वहीं देवानंद जैसे दिग्गज कलाकारों के लिए भी गीत गाए। उस दौर में संगीतकार सचिन देव बर्मन ने उनसे कई फिल्मों में गीत गवाए। उनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44, फंटूश, 9 2 11 और पेइंग गेस्ट।

किशोरदा की प्रतिभा अनूठी थी। उनकी फिल्में आज हिंदी सिनेमा की अमूल्य निधि हैं। अपने गीतों में भी स्वरों से वो अभिनय किया।

0: आत अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार।
1: हास्य व्यंग पर किशोरदा की गहरी पकड़ थी, लेकिन गंभीर भूमिकाओं को भी किशोरदा ने बखूबी निभाया। सुनिए उन्हीं पर फिल्माया गया ये

किशोर दा खुद एक मंजे हुए शानदार अभिनेता थे, इसलिए जिन अभिनेताओं के लिए उन्होंने पार्श्व गायन किया उन अभिनेताओं के अंदाज को अपनी गायकी में बड़े असरदार तरीके से उतारा और दिलकश अंदाज में पेश किया। फिर चाहे वो धर्मेंद्र हो, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन।

अपने करियर के शुरुआती दौर में किशोर दा ने गायन को लंबे समय तक गंभीरता से नहीं लिया। सन 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना। फिल्म आराधना से भारतीय सिनेमा के आकाश में उदित हुए पहले सुपरस्टार के रूप में राजेश खन्ना।

0: फिल्म आराधना, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और गायक किशोर कुमार के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई। इस फिल्म से किशोरदा के करियर में एक रचनात्मक बदलाव की भी शुरुआत हुई और बाद के दशकों में फिल्म संगीत की दुनिया में किशोरदा ने गायन की बुलंदियों को छुआ। किशोरदा ने कई दिलचस्प फिल्मों का भी निर्माण किया, इनमें से कुछ के नाम हैं: दूर गगन की छाव में, दूर कराही, दूर वादियों में कहीं, झुमरू, जिंदगी, चलती का नाम गाड़ी, शाबाश डैडी और बढ़ती का नाम दाढ़ी। आज किशोरदा की बनाई फिल्में अभिनय के छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक की तरह हैं। किशोरदा की फिल्मों में जहां हास्य का अपना रंग था, वहीं उतनी ही गहरी संवेदना भी। उनकी फिल्म का ये गीत जितना अर्थपूर्ण है, उतना ही मर्मस्पर्शी भी।
1: बेकरार दिल तू गाए जा,

0: एक कलाकार के रूप में किशोरदा बेमिसाल थे, हरफन मौला थे। उनके कद्रदानों ने उन्हें नट सम्राट भी कहा। उनकी प्रतिभा के रचनात्मक आयाम एक से कहीं ज्यादा थे। उनके भीतर हास्य व्यंग्य का एक चितेरा, एक दार्शनिक, एक नटखट बच्चा, एक बेहद संवेदनशील इंसान और एक शानदार कलाकार समाहित था, जिसने अपने अभिनय और गीतों से हमें जाने कितनी बार हंसाया और गुदगुदाया।
1: हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए। हाँ, कैसी भी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए ओए। ओ तेरी तिरछी नजरिया
2: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।
0: 13 अक्टूबर सन 1987 को किशोरदा ने सांसों की सरगम पर अपना अंतिम गीत छेड़ा और फिर चले गए महायात्रा पर।

किशोर दा को अनेक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय फिल्मी गैर फिल्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। किशोर दा भारतीय संगीत के अनमोल रत्न थे और रत्न रहेंगे। एक अभिनेता, गायक, संगीतकार और फिल्मकार के रूप में किशोर दा ने भारतीय सिनेमा में जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए फिल्म जगत, फिल्मों के दर्शक और उनके गीतों के श्रोता सदैव उनके ऋणी रहेंगे।

0: कोई लौटा दे।
1: श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत के महान कलाकार किशोर कुमार पर। शोध, आलेख और स्वर कमल शर्मा का, प्रस्तुति रमेश गोखले की।
2: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार इथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nithyananda Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action during students' protest of the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a standard operating procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Minister of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. The ministry said that before 2014, India had extradition treaties with only 37 countries and there was also no dedicated law to deal with economic fugitives or to confiscate their assets. In Jharkhand, students protesting over alleged paper leaks in Jharkhand Public Service Commission and other recruitment examinations today demanded an inquiry by an independent panel of retired High Court judges from outside the state, saying that they no longer trust the ongoing CID investigation. The protesters have been staging an indefinite sit-in in Ranchi since 29th of July. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He added that Pakistan must be held accountable and the world should see Pakistan's hypocritical lecturing on human rights. On media interaction by former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, the spokesperson said that the interaction has been organized by a private media entity. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification of booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on the 27th of October. Union Minister for Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandavia today felicitated Indian athletes who returned from the Commonwealth Games 2026 after delivering historic performances in boxing, judo and para-athletics. During the felicitation ceremony held in New Delhi, the medal winners were presented cash awards of 30 lakh rupees for gold, 20 lakh rupees for silver and 10 lakh rupees for bronze. Interacting with the athletes, Dr. Mandavia asked the athletes to think beyond the playing careers and become contributors to the next generation of Indian sport. In badminton, unseeded Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithvi Krishnamurthy Roy upset six-seeded C. Charo N. Ketamon and W. Thongsa Naga of Thailand 21-16, 21-18 to advance to the men's double second round at the Korea Masters Tournament in Asan today. However, India's other men's doubles pair of Achyuta Aditya Rao and Doda Varapu and Arjun Reddy Pochana lost 3-21, 10-21 to second seeds Choi Sol Gyu of Korea and Go Vee Sham of Malaysia. And that is the end of this news bulletin.
4: The तुम्हारे होने से जिंदगी के तमाम लम्हे खुशगवार हो जाते हैं। तुम्हारे इंतजार में बगीचे में गिरी पत्तियों को हथेली पर लेकर हवा में उड़ाया है कई बार। खिलते फूलों को देखकर मुस्कुराकर अपनी हथेली पर लिखा है तुम्हारा नाम। गिरी हुई पत्तियों और फूलों को बटोरकर बनाया है गलीचा और उस पर बैठकर गिनी है घड़ियां तुम्हारे आने की।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। दिल ढूंढता है वो लाल फूल जिसे देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो जाए। दिल वो नगमा ढूंढता है जो तुम्हारे लिए गाया जा सके। दिल ढूंढता है वो नदी जिस पर प्यार की कश्ती तिरा दो। दिल ढूंढता है संसार का वो कोना जहां सिर्फ तुम्हारा साथ हो। दिल ढूंढता है वो लम्हा जो सिर्फ तुम्हारे साथ बीते।

0: जहाँ तक है धरती आसमान का विस्तार, वहां तक प्यार का है आलम। प्यार का रंग बड़ा चटक होता है, मुश्किल है इस रंग को फीका करना। मन के झील में ठहर गया एक चेहरा, तब से पानी की सतह पर प्रेम का गुलाबी रंग झिलमिला रहा है लगातार।
1: मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।

जीवन की इस आपाधापी में बस थोड़ी मोहलत मिल जाए, जरा से प्यार के लिए थोड़ा सा साथ मिल जाए, थोड़ी सी हो गुफ्तगु, थोड़ी सी हो नोक झोंक, थोड़ी हो छेड़छाड़, थोड़ी सी खिलाए मुस्कान। दरकार है मुस्कान की, दरकार है प्यार की, दरकार है फुर्सत के लम्हात की।